कृष्ण चूड़ा रंगर लाली लाली फूल आ लाली लाली फूल रे भर्ती हिछि बा गच्छ रास्ता कडरी देखिला परे आमो मन को जो शीतलता मिली थाए एई खरा दिन रे ताट सुंदर किछि न हे पारे। प्रभुंकर सृष्टि रचना मध्य अति सुंदर अति अपरूप कहि परबा आमे बहुत सुंदर सृष्टि को से रचना करिछन्ती को समय रे को फूल को फल आसीब आ खरारे सूर्य को ताप को ग्रहण करी केमिति ए धरणी को आहुरी सुंदर बने पारिब से सृष्टिकर्ता बहुत भल भाव जानती। कृष्णचूड़ा फूल केवल गोटे सौंदर्य प्रतीक नुहे आम जीवन गोटे सुंदर संदेश आमको दे थाए कृष्णचूड़ा आमको गोटे बड़ शिक्षा दे थाए प्रखर खरा आउ इत्ते कष्ट सत्वे भी केमिति हसी हसी निजको से सजेई रखी पारे आउ एई फूल एई कथा ही आमको सिखाए। धरणी जेमिति कृष्ण चूड़ार लाल रंग को आपणे निए मनीष मध्य निज जीवन दुख समय रे धैर्यर सहित निजको रंगीन कर रखा उचित निज मन को सबबले सकारात्मक कर रखा उचित आउ ई सुंदर बार्ता दिए कृष्ण चूड़ा फूल आमको।

ग्रीष्म तापर तीव्र दिने रंगीन स्वप्न भरिथिब गाँर चित्रे सेई गछटि दूरु डाके कृष्ण चढ़ा फुले हसे आकाश पासे लाल रंगर अग्नि चिता मनरे भरे अजणा कथा पत्र मध्यरे लुचि थाए शिशु स्मृतिर मधुर छाए पथिक जय जाए छाया तले मन हुए हालुका हसी खेले प्रेमर रंग आशार गीत कृष्ण चढ़ा कहे नीरव प्रीति।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर है।

0: हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम

0: नाम आ चुके हैं एन रंगासामी की एआई एनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य विंशत्यधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मलकुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: मोहब्बत का फसाना।
1: ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खा गए प्यार की रागनी में।
0: वो रूठना मनाना, वो हंसना रोना।

0: बनाया। चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे शाम 6 बजे सिर्फ डीजी नेशनल पर।
1: सुनंतु आंचलिक संवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार। पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत

0: का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त

0: व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि

आज सुबह सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला, आज सुबह सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला, बिल्कुल वही खूबसूरती, वही नूर, वही गुरूर और वही सुरूर, और वो भी आपकी तरह हमेशा दूर। दूर रह के भी पास होते हैं, हमेशा आपके साथ होते हैं। ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनुरोहिया जी मॉर्निंग मेलोडी को नहीं एम तो सुनो था तो आम को।

उगते सूरज की पहली किरण कह रही है, हो चुके है नए दिन की शुरुआत। समेट लो खुशियों के पल आंचल में, आज में जियो कल की मत करो बात। अपने सपनों को साकार करने हेतु ईश्वर ने एक और मौका दिया है हमें।

नया दिन, नई सुबह की जोश और उमंग के साथ चलो नए प्रयास का करो आगाज। नुआ सकल सहित जीवन गोटे नुआ चैप्टर आरंभ हुए, आउ ए नुआ चैप्टर रे लेखिबा दायित्व आपणकर कौन लेखिबे? हाँ, बेले बेले समय परिवेश परिस्थिति भी लेखिबाकु बाध्य करे, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବୁଣିପାରିବେ ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାହା ସାଇତା ହୋଇ ରହିଯିବ ସ୍ମୃତିର ଆଲବମ୍ରେ।

सुबह सुबह सूरज का साथ हो, सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते परिंदों की आवाज हो, हाथ में चाय का कप और यादों में कोई खास हो, उस खूबसूरत सुबह की पहली याद में

ट्युन गर्छन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकको दिल से दिल तक सुनुथले मर्निंग मेलोडी केमिति लागिला निश्चय जणैबे आउ एबे आज सकाळर प्रश्न तार उत्तर देबार समय आउ जे सठिक उत्तर देइछन्ति ता पूर्वरु प्रश्नटी आउथरे

0: ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ସା ଦିଲ୍ତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद

0: तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity.

0: की आवश्यकता पर जोर और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन सांस्कृतिक आदान प्रदान खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को

0: केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलका विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
4: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
5: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान

0: कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाले चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
1: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजय घोषित किया गया है। उन्होंने अमरीका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

नदी एही भूमि के पवित्र करिछंती। एही नदी माने केवल पानी नुहे, से माने संस्कृति, आर्थिकता ओ जीवनधारा। सतरे मो भारतर संस्कृति अत्यंत पुरातन ओ गौरवमय। एही भूमि रे फले सबुज क्षेत्र हसे सबुज क्षेत्र नदी झरणा गां

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर

को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया?

afternoon and very good afternoon friends. Tune kochanti 100.4 Akashwani FM Rainbow Katak Tulsi Tirtak. Suri Gadire Samay Bartaman Aparahna 4ta baje 7 minute Arambha Kariba Show Surila Afternoon. Surila Afternoon Show ne mu achi apanko Rainbow Sathi Subhashri aji apanko Sahita. सुरीला आफ्टरनून शो को स्टार्ट करबा पूर्व रु जणई दोछि बड़ मानको नमस्कार एंड सारवन को ढेर सारा प्यार ट्यून कइ छंदी निजो फेवरेट एफएम स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को फ्रीक्वेंसी जहर 107.4

हम मैक्स अति ट्यून कर चुके 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान शो चालीची सोरीला आफ्टरनून और सोरीला आफ्टरनून ने मुआज आपन का रेनबो साथी सुबशी आज आपन का साथी रे आमी जीवन रे बेले बेले एमती एकुटिया फील करी था बेले बेले केहि हम सहित कथा हब को अवेलेबल न थांती तो पुणी येते बेले समस्त पाखरे थाई भी हमर का ऊपर भरोसा पायनी काले हमको केहि ठीक भाबरे बुझी पारिबे नि भाबी मन कथा मन भीतर ही रखिनो आउ सेउठु ही आरंभ हुए एंजाइटी डिप्रेशन रो सिलसिला शरीर खराब हेले आम डॉक्टर को पाखक जाऊ किंतु मन खराब हेले कहा पाखक जावा मन खराब हेले

आम सहित कनेक्ट हो सारी आमर आज फर्स्ट कलर देखि नबा किए कौट जोड़ी हेलो फोन लाइन टी कटि जाइछि ठीक अछि किछि असुविधा नै साथी आउ थरे हमको कनेक्ट करि परिबे कनेक्ट करबा पे नंबर टी होछि 0671230315।

लेकिन अब नेक्स्ट आ सकते कि कनेक्टेशन दे हेलो ओ फोन लाइन टी कटि जाइछि साथी किछि असुविधा नै अपन पुनी थरे ट्राई करि परबे हम सहित कनेक्ट हे परबे नंबर होछि 0671230315

0: हेलो
1: मैडम नमस्कार
0: नमस्कार के कहते कौट कॉल करते
1: मु जने आपण कर नियमित श्रोता बंधु रमेश चंद्र साहू ओगमा भापुर ढेंकनाळ रु
0: आज्ञा नमस्कार स्वागत कर छी आज रो डेली लाइव चिट चैट को
1: आज्ञा बहुत भलो छन त
0: आज्ञा मु भलो अछि आपण केमती अछन कहंतु
1: बहुत बढ़िया अच्छी पागड़ा भी बहुत मस्त अच्छी पूरा एकदम ठंडा पाग
0: आज्ञा
1: वर्षा भी टिके टिके झिपझि भी हूँ दुकान बस फांका अच्छी लगे
0: लगे
1: गोटे प्रकार देख मैडम साफ नदी अच्छी साफ नदी बाली बहुत एवं तो सब सब गच पथी गच बहुत बाली होता बाली आम खेल बाली छोट हो सप्तम अष्टम बोध पड़ू से कौन कहला कि आम जो बाली खोली आम सब मजाक करते सब पिलाड़ आम गोटे गात खोली दौ गात खोली रईटिन देखी तेरे गोटे बिछे दौ जो गोटे जो लोक आसवे मैंने पड़े बुझे आज्ञा आज्ञा गात खोली दौ गात खोली बहुत खेल दुष्टम टी हूँ बहुत
0: दुष्टम
1: आसवे सैकल धरिकी आसे जो लोक आसवे गात पड़े
0: गात
1: पड़ी आम आड़े फैं फैं हसबू आ कौन मान से बहुत जगला था मानते इमित जगला विश्वास कर मानते छोट बड़ कथ मुहूर्त सब श्रोताबंधन कहते मानते यहाँ मोर मन पड़ा चेस्टा कर लगे ना न कहे भल लगे कारण बहुत दिन है विगत दिन कथ ना चालीस वर्ष कथ
0: तेणुक
1: तेणु मन पड़ा कहते आउ गोटे कथ
0: श्रोताबंध
1: आज्ञा किए कहते बहुत माड़ खाई मानते छोट बड़ कथ मन एमती मानते एमती कथ जानी पारि ज्ञान अज्ञान सब जिन करा आउ गोटे कथ मैडम गोटे साप नदी में गाधोलु गाधवा समय गोटे बंध होता है सब मान बंध होता कौन कि मानते जो जो जिते मरू पड़े सब बंध हुए बंधे आम साप नदी बंध था बंधे आम गाधो गाधवा समय कौन है कि आम सब डेऊ मान गोटे बंध जीव जीव पूरा नदी में डेबू डेया भितर गोटे पिला मैंने बुड़ी रही आम डेई देचु डेला दिटा दात एकदम भांगी गला जहाँ एम मान से बुड़ी रही आम आउ थे डेई पेला दात दिटा भांगी गला बहुत दिन घटना मान ये मन पड़ा मुझे कल सेयार कर दिया भल लगे मानी
0: निहाती निहाती आपण से जो निजा निजर मीठा मीठा स्मृति आम सहित शेयर कर सतरे हसी हसी पेट दरज हो जाऊ
1: मैडम भल कथ कहीं स्मृति कथ मन पकस घटना बहुत घटना अच्छी श्रोता मैंने कहते मिनट अच्छी
0: रही नमस्कार।

0: लेकिन अब नेक्स्ट कॉलर हम तक ही जुड़ी चंदी। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार जय जगन्नाथ। की कहतले कोड कॉल करथले?
1: मैम प्रफुल्ल प्रधान कहतले कुआरपाल माणिया मंदिर।
0: आज्ञा नमस्कार, केमती अछंती?
1: मैम भलो अछि।
0: आज्ञा ताले आपण कहंतु आपणकर सेही मिठा मिठा दुष्टामी कोन सब थिला?

GST काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायरक समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती GST दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से

जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

ऑन करिशन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल सी दिल तक वर्तमान आसन तो सुनवा आज प्रसारित होबा कथिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस अष्टम भाग शुणे संध्या 6:10 भक्तिगीत कार्यक्रम आराधना शुणीपर संध्या 6:30 संध्या असर शुणीपर संध्या 7:25 राति 8:02 शुणे कार्यक्रम गीतरे मितरे अभुल स्मृति शुणीपर राति 9:15 एवं राति 10 कार्यक्रम रेनबो एसएमएस शुणिले आज प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा च असम राज्यस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः। बिहार राज्यस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारः मई मासस्य सप्तमे दिनांके भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम अकरोत्, यत्र त्रयः भारतीय नागरिकाः व्रणिताः अभवन्। सम्पूर्णे पश्चिम एशिया देशे शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेश्च आह्वानम् अपि अकरोत्। अमेरिका ईरान देशौ गल्फ क्षेत्रे नूतनानि आक्रमणानि आरभताम, यत्र उभौ पक्षौ होर्मुज जलसन्धिं नियन्त्रयितुं संघर्षरतौ स्तः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां दिल्ली कैपिटल्स इति दलं दिल्ली नगरे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विधानसभा निर्वाचनानां परिणामानां घोषणायाः अनन्तरं तमिलनाडु केरलं राज्ययोः सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक प्रक्रियाः आरब्धाः सन्ति। तमिलनाडु राज्ये अभिनेत्रीतः राजनेता रूपेण परिवर्तितः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके इत्यनेन दलेन अष्टोत्तरैक शतासनानि जित्वा राज्ये बृहत्तम दलत्वेन उद्भूतमस्ति। दलस्य निर्वाचने प्रबल प्रदर्शनस्यानन्तरं नवनिर्वाचिताः टीवीकेति दलस्य विधायकाः चेन्नई नगरस्य समीपे पनायूरे दलस्य मुख्यालये उपवेशने श्रीविजयाय औपचारिक रूपेण स्वनेता रूपेण चितवन्तः। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इत्येषः राज्यपालाय स्वत्यागपत्रं समर्पितवान्। केरल राज्ये कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ दलसमूहः सर्वकार निर्माणाय अनौपचारिक चर्चां कुर्वन्नस्ति। केरलस्य 43.1% विधानसभा क्षेत्रेषु 2.1% क्षेत्रेषु अद्भुतं विजयं प्राप्य कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ दलसमूहः विधायक दलस्य सभायाः अनन्तरं मंत्रिमंडलस्य निर्माणार्थं राज्यपालेन सह मेलनं करिष्यति। भाजपेति दलेन दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मंत्री च अमित शाहः पश्चिम बंगाल राज्ये विधायकानां उपवेशने विधायक दल प्रमुखस्य निर्वाचनाय केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः। ओडिशा राज्यस्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यस्य केन्द्रीय सह पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति। केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डाः असम राज्ये विधायक दलस्य नेतृत्व निर्वाचनाय केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति। सहैव हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यस्य केन्द्रीय सह पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति। एतानि नामानि भाजपा संसदीय केन्द्रीय पर्यवेक्षक मण्डलेन अनुमोदितानि सन्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वर्यस्य नेतृत्वे बिहार राज्यस्य मंत्रिमंडलस्य मई मासस्य सप्तमे दिनांके महत्वपूर्णः विस्तारः भविष्यति। भाजपेति दलस्य राज्याध्यक्षः संजय सरावगी अवदत् यत् शपथ ग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः, जेडीयू दलस्य अध्यक्षः नीतीश कुमारः, एनडीए दल समूहस्य अन्ये वरिष्ठ नेतारोऽपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। श्री सरावगी अवदत् यत् गांधी मैदान इतीदं स्थानं समारोहस्य स्थलरूपेण चितमस्ति।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: कार्यक्रमस्य सज्जता पूर्वमेव प्रचलिता अस्ति। सहैव गांधी मैदान इत्यत्र सार्वजनिक प्रवेशः प्रतिबन्धितः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना यूएई देशस्य पुजैराह क्षेत्रोपरि कृताक्रमणस्य दृढतया निन्दा कृता। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् नागरिकाणां मूल सौकर्याणि लक्ष्यीकृत्य

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून को चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटे दिल से दिल तक छुड़े घड़ी रे समय वर्तमान संध्या 17:30 आरंभ हो जाइछि शो संध्या असर संध्या असर रे आपण जणै पारिबे निजो प्रिय जन मन को निजर मनर कथा जणै पारिबे निजर गुड विशेस केमति जणैबे केमति एसएमएस करिबे कहि रखुछे साथी निजर फोन रो मेसेज बॉक्स को जाई टाइप करंतु एफएमआरसी ठीक स्पेस दियंतु जहाँ को मेसेज टी को डेडिकेट करने को चाहती नाँ और आड्रेस लिखु तापर टे स्पेस दे निजर मेसेज टी को लिखि निज ना और आड्रेस लिखि पठे दियंतु आम ऑफिशियल नंबर 09495963210 एवं व्हाट्सएप नंबर रही 8895254200 एही दुईटी नंबर भितर कौन सी गोटे नंबर टी आप मेसेज आमको करिपारे आचे पारे निज प्रियजन मान पाखे निजर गुड विशेस नंबर दुटी आउ थे कह रखुचे साथी एसएमएस करने नंबर रही 09495963210 और व्हाट्सएप नंबर टी रही 8895254200

0: केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के

0: साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
3: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरा

0: सावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9.

0: मैंने यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार ये अभूषत जात हम मरत जात, अरे चतुर नार करके श्रृंगार, मरता
1: अयो अरे थम थम थम रोक।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार बड़ी होशियार, करके सिंगार अपने ही जाल, मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, मरत जात, मरत जात, मरत जात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी

0: गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
2: ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସହ ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। 5,650 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କପା ଉତ୍ପାଦ ମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026କୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର 33ରୁ 37କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟର ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳୀୟ ସହପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ନିଯୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କହିଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୌସୁମୀ 2026 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। ଗ୍ରାହକ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଲେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନ। एवं राज्य रे कालबैसाखी प्रभाव

श्रीकृष्ण उद्धव संवादरे संपूर्ण आत्मज्ञान ओ भागवत धर्म निरूपण करा जायछि एवं शेषरे जदुवंश ध्वंस परे किपरि श्रीकृष्ण आत्मजोग प्रभावरे सोधाम को प्रत्यावर्तन कले ता वर्णना करा जायछि। द्वादश स्कंधरे रहिछि भविष्यत राजवंश वर्णन, कली धर्म कथा, जुग धर्म वर्णन, परमार्थ निर्णय, वेद शाखा प्रणयन, पुराण लक्षण वर्णन इत्यादि। ଏହାପରେ ସୁତ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି।

फ्रेंड्स आमे रास्तारे जिबा सेवा करिबारे बेले निश्चित भावरे सतर्क सचेतनता सहित जिबा सेवा करिबा उचित कारण मनुष्य जेतेबेले सतर्क हेथाय सचेतन हेथाय आसुथिबा विपदकु सामना करिबा पई ता पाखरे शक्ति थाय सामर्थ्य थाय तेणु रास्तारे जिबा सेवा करिबा बेले निश्चित भावरे कन्सेंट्रेशन रास्तारे रखिबा उचित एवं को दिगरु गाड़ी आसुछि आमर गाड़ी चालना केमिति रहिछि सेथिप्रति मध्य आमको दृष्टि निक्षेप करिबाकु पड़िबो सतर्क रहिबाकु पड़िबो तेबे जाय आसुथिबा विपदकु आमे सामना करिबा बा आसुथिबा विपदरु आमे उद्धार हेइ पारिबा अन्यमानकु मध्य उद्धार करिपारिबा तेणु सबुबेले रास्तारे जिबा आसिबा करिबा समयरे निजर गाड़ीर स्पीडकु निज कंट्रोलरे रखन्तु एवं सदा सर्वदा ईश्वरंकु डाकि रास्ताकु जिबाबेले निजकु संपूर्ण भावरे रास्ता उपरे नजर रखि जानतो देखिबे आपणक गति आपणकर दिन शुभमय हबो आपणक यात्रा मध्य सफल हबो।

हेलो हाय नमस्कार निशी तरफ मानक ढेर सारे शुभेच्छा शुभ कामना एवं मानसिक भाव चापग्रस्त हंतु ना एकदम सुंदर भाव सहज भाव सरल भाव आनंद उल्लसित भावना नहीं जीवन को जीवा सिखंतु आरंभ करंतु एई सकाळ हब आपण मानक पई सुंदर भावनार सकाळ आज दिन समस्त आशा समस्त आकांक्षा समस्त कामना आपणकर पूर्ण हो सुंदर भावना सह आरंभ करिबा शुभ सकाळ।

म्युझिकली ओर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक दिल से दिल तक चली शुभ सकाळ प्रोग्राम यस आमे माने अमृतर संतान सात रंगर भरा आम जीवन सत्य को सामना करिबा आलस्य को एडे सफलता आड़ को अग्रसर हेबा होचे आमर मूल लक्ष्य तेणु ए दिगरे आमे संकल्पबद्ध हेबा आमर गतिविधि को आमे निजे सुधारिबा एवं आगो को बढ़िबा पई आमे प्रतिज्ञाबद्ध हेबा संकल्पबद्ध हेबा तेबे जे आमे निश्चित भावरे सफल हेबा आउ जीवनर रंग को आउ टिके रंगीन करि पारिबा।

मन चाहूला जन्मे देखी तो बध बेस हाथ भागा बोली तते हरि रही गला अवशेष।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: इतने समय परे आपण कहिबे फोनटा लगे दीछंती आउ किछे कहू नाहंती। किए कहूछंती कहंतु।
1: भुवनेश्वरु पकाचंद्र साहु कहुची,
0: आज्ञा
1: सालिया साहेब।
0: आज्ञा आज्ञा, आपण को आमे स्वागत जनाउछु। तबे कोन कहिबे आजर डायलिन लाइव चिटचाट रे जहा टॉपिक रहिछि से संपर्क रे आपण को मत कहंतु।
1: दीदी देखंतु, आम घरे जितले कुनिया मंत्र सब आसंती।
0: आज्ञा
1: आगे नोटारे पानी दियंती गोड़ धोया को, आ घरे जदि लेंबू आउ किछि सरबतर दियंती तांको पानी दियंती पिया को।
0: अच्छा,
1: जलिका मलिका खाया को दियंती, तापरे जा भलो मंद कथा बाता करंती। आउ सिए जते विदा होंती आउ हमकु भलो मंद जाउ छोट पिला बुनी के हमकु पैसा गुडी से देकी जांती।
0: अच्छा
1: हां,
0: आजर टॉपिक कोन रही छे आपण सुनि छंती?
1: हां सुनि, 8:30 रु प्रोग्राम ता सुनतनी
0: आपण। नाही वर्तमान
1: बुनी म आगुआ लगे देनी।
0: हां नाही वर्तमान हमर जो 9टा बेले आरंभ हला डायली लाइव चिटचाट शो, सेथरे टॉपिक कोन रही छे आपण सुनि छंती?
1: आपण कहिले जे लोक जे पसंदा करंती जिमदी,
0: आपणकर को गुण
1: करंती,
0: आपणकर को गुण एमती भलो गुण अछि जहा को अन्य माने पसंद करंती प्रशंसा करंती?
1: ଆଉ ମୁଁ ମେନ୍ ହେଲା ଗାଁରେ ସମିତ କଥା ସବୁ ମାନେ, ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣିଦିଏ ତାଙ୍କୁ।
0: ଆଚ୍ଛା,
1: ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
0: ବଢିଆ, ଆପଣ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତୁ।
1: ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଯଦି ନ ରୁହନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ କିଛି କାମ ଦାମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏସବୁ ଟିକେଟ ମିକିଟ କାଟିକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।
0: ବାଃ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର ହିସାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
1: ଦିଦି ନମସ୍କାର,
0: ଆପଣ
1: ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ମୋର ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି।
0: ବହୁତ ବଢିଆ, ଏମିତି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହଉଥାନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।
1: ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ନମସ୍କାର ଦିଦି।

0: मते लागे नाही भला मो अपन को पाउछि भला
1: ओके ओके ओके आपन कॉल करि छथि कथा हो छथि तबे कहू तो आपन को पाखरे एमति कोन भलो गुण अछि
0: तमाम देखो अपा मत तो आम साई परिसर समस्ते कहते मत गेल समस्ते तुलबुली विभिन्न प्रकार गोटे ना दे किए कहते दीक्षा किए कहते बड़ किए कहते कुनी किए कहते तुलबुली किए कहते दुष्ट एमती मन हिसाब से जमी प्रकार से ना दिखती आमती गुण मानते केमी मोर गुण अच्छी समस्ते मत भल पाती
1: मत
0: मु दिने जदि घरे नथिबि ताइले मते समस्त खोजिबा को आसंती छोटा छुआ माने बडो लोक समस्त मते भलो पांती अपा आ मु माने आम अपा को आम रेंबो को भलो पाउची
1: बहुत बढ़िया आपन को जेमति अन्य माने भलो पाउछंती आपन मध्ये सेमति अन्य मान को भलो पाउथिबे तेबे आपन को पाखरे निहाते किछि भलो गुण थिबो जो गुण पई अन्य माने आपन को एत्ते भल पाइबा दउछंती एत्ते भल पाउछंती ओके आम सहित से गुण शेयर त करि परलेनी आपन किंतु आपन को भल पांत बोली कहउछंती
0: अपा मो गुण तो मुझे शेयर करुची माने मत भगवान केमी गुण दे मुहारी कौ दिन मन को कष्ट कथा भी कहनी सहित मुझे झगड़ा लगनी आदि झगड़ा लगे मुझे ही झगड़ा लगे पुनर्बार सहित कथा हुए अपा लगे मत
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपण एमती समस्त पाखरे प्रिय रही था आमको कॉल करथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद
0: अपा नमस्कार
1: नमस्कार
2: नमस्ते सुनीता कैसी हो आज यहाँ कैसे आना हुआ
3: नमस्ते दीदी आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ
2: बधाई हो अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो
3: ये कौन सा टीका है दीदी
2: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर
3: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई
2: नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल

0: यूविन पर रजिस्टर कर लो।
1: धन्यवाद दीदी।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटे
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: हाँ की कोशिश नमस्कार
1: सूर्यनंदन साहू कहती जगतसिंहपुर
0: आपको स्वागत जनाऊँ कौन रही है टैलेंट बा भल गुण
1: टैलेंट तो निज टैलेंट निजे कहवा पसंद करेनी फिर भी जत तरफ निजक सुजोग मिले अन्य को जी मो तरफ साहय करवा कैसे जमीक रिसेंटली आसला बेले गोटे नई रे लोक मैंने बनीश पक्षी मछ धरती आप मैडम जानते बड़ मछरिया तो आसला बेले एस गोटे जल कुआ गोटे लगी तो कई काढ़ू ना देखुले मुझे जा बचाव चेष्टा कली तापर पर जन भाई मत देखा सी साय कले
0: बहुत बढ़िया सहित एक आलोचना कले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद
1: मैडम।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चली छे डायलिन लाइव चिटचैट शो। आज टॉपिक रही छे निज भीतर थिबा को भल गुण बा टैलेंट पाई आपण को लोक माने पसंद करंती आउ प्रशंसा करंती। एक कथा आज आपण सीधा सळक भाबरे कहबा को चाहुथिले हमको डायल करंतु 0671230315। हेलो हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक किए कहउछंती?
2: सुमा सारंगा चौधरी सापरिया भलेटन तु यानी नि जाउती मेडिकल कॉलेज दिनायना को जायगा
1: आपनको स्वागत छनो छी। कोन कहिबे आपनकर कोन कोन भलो गुण रहि छी?
2: मो भलो गुण कोन बुवा कहि लीजे कहि परिली आ जे जति जे सत्ता भाई होने आने एवं जति को रेडियो जंकी आज्य भाई

0: धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आउ थे माँ सारा पाखे पत्र माँ सारा मुझे भल खुशी रखु प्रार्थना को
1: प्रकृतरे आमे मनीष ईश्वरों सृष्टिरे मनीष होची श्रेष्ठ जीव तेणु आम भितर जहां भी खराब गुण रही आमे भावुचे ये खराब गुण ताको परवर्त समय आज वर्तमान टिके टिके दूरेबाकु आमे चेष्टा करिबा भल गुण को आपणेबा भल कथा को आपणेबा भल कथा सुनिबा भल कथा सिखिबा भल कथा कहिबा ए सब जदि आमे निजर दैनंदिन जीवन सारणी रे प्रयोग करिबा तेबे आमर खराब गुण आम ठारु धीरे धीरे धीरे धीरे दूरे जीव बहुत पछक पलैब आम चेष्टा करिबा आहुरी भल हबा आहुरी निजको मार्जित करिबा पई नहे कि तेबे आ गोटे कल नै जीवा तापरे सुनैबे मीठा मीठा गीत देखिबा किए कहुछन्ती हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक
2: हेलो
1: किए कहुछन्ती आज्ञा
2: हेलो
1: आज्ञा हेलो
2: ओडिशा एसोसिएशन फॉर द ब्लैंक एसोसिएशन कहती प्रसन्न कुमार लेंका टॉपिक टी रखी चाहिए बड़ा भल टपिक आवश्यक किंतु निजर प्रशंसा निज मुह कहवाटा कहीं मत टे समुचीन लगुनि आज्ञा बुझे क्रिटिकल कर
1: किंतु माने कौन कहले आमर जो भल गुण आम जी दुई पद कह अन्द्वारा इन्सपायर हे अन्द्वारा बहुत भल कथा शुणीपारे जापारे शिखिपारे से छोटिया प्रयास तेज कहते आप जटिलता निजर प्रशंसा निज मुहे कहवाटा कहीं मत टे समुचीन लगुनि
2: आज्ञा बुझे किंतु कहले आमर जो भल गुण आम जी दुई पद कह अन्द्वारा इन्सपायर हे आमे प्रकाश करिया केमिति सेटा बड तो लागुची आपण एमिजा गुटे क्वेश्चन रखुछंती जोटा की हाउ आई गेट द हाउ ठीक अछि भला टॉपिक अछि मोर ओटे सबुटर माने मते लागे सेटा मो पई सेटा भलो गुण कैना जदि कोनोसी लोक मु जने ब्लाइंड पर्सन भी किंतु कोनोसी लोक जदि असुविधा पडिताए जति की मो पाके पैसा थाए मु इवन प्रत्येक दिन आज भी नुह प्रत्येक दिन मु गोटे ना गोटे पिला को हेल्प करे जोटा कि खाइबा पई हो बा पैसा मागे मु काकु दिए सत कथा एटा गया किंतु खाइबा पई जद मागिव मु त खाइबा गोटे दे कारण माजु आजिकल जो पैसा देले और से माने कोन करने मद पद मध्य पद पी दउछन्ति सेइटा मते पसंद लागेनि आउ के गोटे असुविधा पत्र धार उधार मागिले मध्य दे दिए एवं सुध काठ मु आणेनि आज्ञा बुझले सुध पुद भल लगे तेणु भगवान एआई सेकेंड थिंग्स गोटे जिन भल गुण मुझे भल अर्गन हारमोनियम प्ले कर
1: तेणु
2: से बजे मैंने लोक भारी प्रशंसा कर देखा जाए प्रोग्राम कर गाँव गोटे कीर्तन मंडल निजे निज चेष्ट कर गांक गला समस्ते मैंने बस ओल्ल पड़ी मैंने समस्त सुट मु मैंने आगे चलिक जाए छती आम घर मुझे घर को जाए आज पर्यटन
1: बहुत बढ़िया ब्लाइंड पर्सन दृष्टि बाधक।

0: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी। डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस।

0: इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
1: लिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
1: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सही दिल तक रे निश्चय छे आपनंग सह चली छे डायलिंग लाइव छे चैट। निजे भीतरे थिबा कोन भलो गुण आउ टैलेंट को अन्य माने पसंद करंती आउ प्रशंसा करंती ए संपर्क रे आपन दुई पद हमगु जाने परिबे। हमर टेलीफोन नंबर 0671230315। हेलो, आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
4: हेलो मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ।
3: नमस्कार, जय जगन्नाथ। किए कह
4: प्रफुल्ल प्रधान कहतीम
3: आप स्वागत जनुच कहे आज टॉपिक
4: आज बहुत बढ़िया निजर प्रशंसा निजे करा भी ठीक नुहे कि मोर कथा कह प्रत्येक जिनस टाइम रखी था प्रत्येक जिन टाइम पूर्व
3: जाम
4: कै मु टाइम पूरा रखी दी था समय कम कराब कि समय जुआब जी जहाँ कह टाइम अनुसार मोर कम करके मोर भल गुण
3: कौन
4: कह
3: आपण समयानुवर्ती अन्यमानक मध्ये समयर मूल्य आपण सिखौछन्ती। आज जो जोडी हेछन्ती आपण टेलीफोन माध्यमरे अन्यमाने मध्ये समयर गुरुत्व बुझुछन्ती आपणकर ए जो कथावार्ता माध्यमरे आपणको सेतिमे बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मोर गुट्टी कथा हला कहि बोला जे कोनसे लोकको जहां सहाय्य करिया सब कि जे कोनसे काम करिया थाउ जदि आता पाछरे टाइम पूर्व पहुंचि जइबो निहाती लोक शांति हबो
3: निहाती
4: जे जे समते मोर अनुरोध टाइम टा को मूल्यवान हूँ टाइम टाइम गुरुत्वपूर्ण ना बढ़ी
3: जहाँ
4: जो समय देखते समय पूर्व पहुंचा देखिए आप मन के निर्मल रही आत्म निश्चित खुशी गोटे मनीष दीभ रही
3: बहुत बढ़िया कथा कहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: नमस्कार मैम, धन्यवाद।
3: नमस्कार। भागवत लेखा अच्छे मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। प्रकृत में मनीष हूँ अमृतर संतान ईश्वर सृष्टि से सबुठ श्रेष्ठ जीव तेणु आम मान भितर एमती किसी गुण रही दरकार दिव्य ज्ञान मनीष देहे दिव्य ज्ञान एमती सुंदर ज्ञान एमती सुंदर भावना एमती सुंदर गुण आम भितर रही दरकार जो गुण को जो भावना को जो टैलेंट को देखे भगवान आशीर्वाद प्रदान करेंगे भगवान खुशी आम चाहे भल हवाको आम चाहे सब समय सब क्षेत्र में निजक श्रेष्ठ बोली प्रमाणित करने देखा आम सहित आउ जन कलर किए अच्छा जी तक संपर्क द्विपद आज आमको कह। हेलो हेलो, आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक। हेलो,
5: नमस्कार। आज्ञा, जय जगन्नाथ।
3: नमस्कार, जय जगन्नाथ। किए कहते
5: समीर पंडा कहती तेलगापंठ कटक वर्तमान पूर्णी महाराष्ट्र।
3: अच्छा, ओके, आपनको स्वागत जनाउछु। एते दूर रे थाई भी हमको आपन मने पकाई छंती आ कॉल माध्यम रे जोडी हवा को चाहि छंती तबे कहंतु आज रा जहा टॉपिक रही छि से संपर्क रे।
5: आज्ञा, आज ओडे पडो आपन ओडे माने कौन कह अकर्ड सिचुएशन पकई दे निज मुहरे निज प्रशंसा तो केबे कहि निज मुहरे निज डेंगुरा बजा जाय नाही ता पूर्व कहबी पदे कथा कहंती प्रशंसा न मिलु दुख कर नहीं लोक कह मिलू तेल भी जलुची सलिता जलुची लोक कहते दीप
3: जलुची
5: आदे कथा जोड़ी आम पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कहते हाँ क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी
3: सही
5: आम आम सठिक पथर रही कर्तव्य पथर धर्म को पालन करवा निंदा मिलू

0: म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल सही दल तकरे निशेच्छा आपण का सहिता चलिचे डायलिन लाइव चिटचैट आज रा टॉपिक रही छे आपण को पाखरे थिबा कोण भलो गुण से भलो गुण को अन्य माने बेले बेले आलोचना करंती पसंद करंती आउ प्रशंसा करंती गोटे कथा एटी कहिबे बहुत लिसनर्स कहउचंती जे निज प्रशंसा निज मुहरे कोण करिवु नाही मोर कहिबार कथा टॉपिक टी टिके अलगा प्रकार अछि निज भितरे एमिति कोण भलो गुण अछि जो भलो गुण को अन्य माने पसंद करंती अन्य माने प्रशंसा करंती मु कहुनी निजर प्रशंसा आपण निजे करंतु निज भितरे कोण भलो गुण रहै छै से भलो गुण केवल आमको जणैबा को आजर टॉपिक रहै छै तबे डायल करंतु 0671230353 एबे देखिबा जणे कलर आम सहित जोड़ी हि जाइ छथि कोण रहै छै तांको पाखरे भलो गुण बा टैलेंट हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटे
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार जय जगन्नाथ
0: नमस्कार जय जगन्नाथ की कहउछंती
1: हम गीतांजलि तळे एक छले फ्रेंड्स
0: आपन को स्वागत छलो जे कोन रही छी मैडम आपन को भलो गुण बा टैलेंट
1: अ मोर भलो गुण हला मो कबे भी जो हारी जायनी जहां हे गेले भी मो समस्त को विश्वास करा उसी विश्वास रे फल पे बरे मो सामने लोकर मु एते किछि करी जाय कि मु निजो कहि मिसेज कर दिए
0: अच्छा
1: और जते बेले किछि चीट पाए बा होय त तबे जते बेले कोन होय ना मु बहुत भांगी जाय
0: मो
1: आवश्यकता थारु जेम जे दे सते आवश्यकता रे एमिति भांगी जाय उसको मते से तोल को निजो को गोटी पारे ना बहुत दिन पर्यंत मु से डिप्रेशन स्ट्रेस रे कि मोर भल गुणटा हला आपण होय मु बारंबार भांगी जाय तोड़ जाय चाहा भी निसेज जाय जते किछि घटि जाओ मु किंतु पूरी थरे होय थिया हे जाय
0: पूरी
1: निजो को संभाल लिए आ पूरी स्ट्रांगली थिया हुए आ सब परिस्थिति को मु सामना करे केबे भी एमती नै कि पूरा पत्थर उठा दे के पूरा पड़े जाय
0: एते
1: जहा भांगी गले भी मु पूर्ण चले आ मो लक्ष्य पत्र पूर्ण थरे होय अग्रसर हुए एटा मोर सबुठ बड़ गुण आ होची समस्त को न कि सेठी पर हार मानने वाली कि पूरा रहि छी
0: हला
1: सेठी

हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी उन्हें चलते रहे। जीवन तो आगको आगको चलिब चलीचे, ता भितर जेते दुख आसु, जेते कष्ट आसु, जेते जंत्रणा आसु, हसिबा को आमे केबे भी भूली बानी, मनउणा करिबानी, मानसिक चापग्रस्त होबा नाही। सबबेले मन खोला, मन भलो रखिकी, मन आनंद पूर्ण रखिकी आमे काम करिबा, तेबे जाई आमे मानसिक चापरे पड़िबानी, आमको रोग कम हब, हबनी बोले नाही, रोग कम हब, आउ आमे सुस्थ रही पारिबा। ओके, परवर्ती मेसेज टी करिछंदी सुनील कुमार महंती सिल्लु आकृति देवकारी संकतराज कटकरु सुनिबा पई चाहिछंती बादल फिल्म रो गोटे बढ़िया गीत टे सुनि दोछी आपनका मन पसंद रा इस सुंदर गीत टी को।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 61 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के मुख्य बिंदुओं पर आधारित होता है। रविवार 29 मार्च 2026 को मन की बात के 132वें एपिसोड का प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस पर ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने शुगर इंटेक कम करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रेरित किया कि छोटे छोटे प्रयासों से हम सभी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मोटापा यानी ओबेसिटी से दूर रह सकते हैं। आइए आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियोज में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो मेहमान। स्वागत कीजिए डॉक्टर मेखला चंद्रा का। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
0: आप ओबेसिटी मेडिसिन फिजिशियन हैं और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे श्री विकास शर्मा जी का। नमस्कार
2: जी। नमस्कार और नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को।
0: विकास जी एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल है और इससे पहले कि हम मेहमानों से चर्चा करें, आइए पहले सुनते हैं मन की बात का वो अंश जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिटनेस और योगा का उल्लेख कर रहे हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक कम करें। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे।
0: बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। डॉक्टर मेखला, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ओबेसिटी के प्रति समाज को सजग किया है, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी यानी मोटापा क्या है।
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओबेसिटी एक बीमारी है। इट इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिजीज या चॉइस। तो डिजीज मतलब बीमारी। अब इस बीमारी में होता क्या है कि जो आपका अनहेल्दी फैट है या जो चर्बी है जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट होती है स्पेशली, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंड अदर डिजीजेस को इनवाइट करती है। तो उसमें आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओबेसिटी इज अ क्रॉनिक डिजीज, आज की डिजीज नहीं है, या आपकी बॉडी में काफी टाइम से जुड़ चुकी है। मे बी इवन डेकेड्स बिफोर, 10 सालों पहले तक भी अगर हमने कभी टेस्ट नहीं करवाए, तो ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे बन के इन्वाइट कर रही है अदर डिजीजेस को बनाना। अब इसका अंदर बॉडी में हर ऑर्गन में अलग तरीके से काम होता है। पैंक्रियाज में हम जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है, तो आपको शुगर की बीमारी होने के हाई चांसेस होते हैं। अगर आपकी आर्टरीज में प्लाक बनना शुरू हो जाए तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक के ज्यादा चांसेस होते हैं।

0: सो ये सारा इंटर रिलेटेड है और इसको आज हम जानना चाह रहे हैं एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक दूसरे से ऑब्वियसली नहीं फैलती है, बट ये एक सामाजिक बीमारी है. हम सब इसमें ही इन्वॉल्व हैं एंड इसमें पूरा देश को एज अ रिस्पॉन्सिबल आना ही पड़ेगा टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर डिजीज.
1: जी, तो जैसे डॉक्टर मेटले ने कहा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन की तरह ओबेसिटी भी एक क्रोनिक डिजीज है, तो ये एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है. लेकिन अगर लाइफस्टाइल की बात करें, आप तो कॉर्पोरेट जगत के प्रोफेशनल है विकास जी, कई बार सुनने में आता है कि हम आम तो बहुत बिजी हैं, वर्क कल्चर ही ऐसा है कि फिटनेस के लिए हमारे पास समय ही नहीं है.
2: सो कॉर्पोरेट लाइफ का बिगेस्ट आयरनी ये है कि फिजिकल काम वहाँ पे बहुत कम होता है, मेंटली बहुत ज्यादा ओवरलोड होते हैं लोग. वहाँ पे मॉर्निंग 9 to 5 एक ही स्क्रीन के सामने बहुत लंबे समय तक बैठना होता है, जिससे हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है. और स्टिफ होने की वजह से हमारा जो माइंड है, बॉडी स्टिफ हो गई है, माइंड हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है. इस वजह से हम कुर्सी पे बैठ के ही थक जा रहे हैं आजकल. तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं साइलेंट फटीग है, जो कि ओबेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रह रहे हैं.
1: तो आप ये कह रहे हैं विकास जी कि कई बार जो कामकाजी व्यक्ति है घंटों कंप्यूटर्स के सामने बैठा है और उसे एहसास ही नहीं हो रहा कि उसका पोस्चर सही नहीं है.
2: बिल्कुल.
1: और अगर पोस्चर सही नहीं है, क्या इससे भी फिर वेट बढ़ सकता है?
0: जी बिल्कुल. लंबे समय तक बैठा रहना, मेंटल फटीग होना, फिजिकल मूवमेंट ना करना, इसमें ऑब्वियसली पोस्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल है. ये सारे आपके फैक्टर्स बनते हैं टू इंक्रीज द रिस्क फॉर ओबेसिटी.
1: तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शुगर इनटेक कम करें, तो इसे हम कैसे समझें?
0: शुगर इनटेक, अगर मैं आपको आज बोलूं कि कम करिए, आपको एज अ कॉमन लिसनर शायद वो समझ ना आए. तो ये सबसे पहले तो किचन में शुरू होता है. शुगर इनटेक होता क्या है? तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी शुगर्स ज्यादा हानिकारक हैं. देयर इज नो गुड शुगर एज सच. हर चीज पोर्शन पे आके लिमिट होती है. तो आप जो भी शुगर सोर्स ले रहे हैं, ट्राई कि आप नेचुरल उसको ज्यादा सोर्सेज लें. व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर जो होती है उसको ज्यादा अवॉइड करें. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करने से पहले प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार उसकी जानकारी लें, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं. एंड आपको देखना पड़ेगा कि आप उसके राइट कैंडिडेट हैं कि नहीं. तो कम करना मतलब कि आप अपने डेली इनटेक में धीरे धीरे उसको कम करिए, वरना आपकी कोई आदत ऐसे बन नहीं पाएगी. हमारे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो धीरे धीरे चीनी छोड़ते हैं और फिर चाय में बिल्कुल चीनी नहीं लेते. तो वो एक आदत बिल्डिंग है, जिसे हम हैबिट फॉर्मिंग कहते हैं. वो एक पार्ट है शुगर कम करने का.
1: जी, और आपको याद होगा श्रोताओं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये भी सुझाव दिया था कि स्कूल कॉलेज में हम लोग शुगर बोर्ड बनाएं, जो जो वहाँ खाने की चीजें मिल रही हैं उस पे लेबलिंग हो कि आखिरकार उसमें कितनी शुगर है, कितने आर्टिफिशियल स्वीटनर है. लेकिन आपको लगता है कि कई बार हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत चीनी है, बेस्ट अवॉइडेड?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, चाहे वो जीरो कैलोरी हो या डाइट हो, बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है. और ये इसलिए नहीं है कि उसमें कौन सी टाइप ऑफ शुगर है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बट ऑल्सो क्योंकि वो एक अल्ट्रा प्रोसेस फूड है. जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक ग्लूकोज स्पाइक क्रिएट करता है. ये जो अचानक से जो हाई स्पाइक आती है आपकी बॉडी में, ये ज्यादा हानिकारक होती है. एंड इन स्पाइक्स को ही हमें अवॉइड करना है. तो जब भी आप सोचेंगे या सुनेंगे अपने डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल के थ्रू कि इस चावल को आप रिप्लेस कर दो, या आप मिलेट्स खा लो, या रागी चूज कर लो, ये आपकी बॉडी में अंदर जाके जो हम ग्लाइसिमिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो शुगर स्पाइक्स को कम कर रहे हैं एंड कंट्रोल एंड बैलेंस कर रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. तो कोशिश कीजिए कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को ना कहें, लेकिन जो पानी है, पानी अवश्य पिए. आपको लगता है कि ऑफिस में कई बार काम करते करते हमें पानी पीना ही याद नहीं रहता?
2: जी बिल्कुल. ऑफिस में हम बेसिकली जब काम के प्रेशर में होते हैं तो हम यूजुअली पानी पीना बिल्कुल ही भूल जाते हैं. और आजकल जो मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, लोग कॉफी और चाय को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ऑन वाटर. तो अगर आप लंबे घंटों तक एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक वाटर ब्रेक उसमें जरूर लें, रादर देन आप चाय और कॉफी पी रहे हैं. जैसा मैम ने अभी कहा, आपको आपका शुगर कंट्रोल करना है, तो जब आप चाय और कॉफी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपकी कैफीन के साथ में आपके शुगर भी आपकी बॉडी में जाएगा, जिसको कि आप ओबियसली ओबेसिटी की तरफ आपको लेके जाएगा. क्योंकि आप लंबे घंटों तक बैठोगे, चाय पियोगे, कैफीन से आपका ब्रेन भी स्टिफ होता है, दूसरा आप सुगर भी इनटेक साथ में आप कर रहे हो तो वो भी आपके मोटापे को बढ़ाता है।
1: जी
0: ये बात बिल्कुल सच है, पानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। मैं बस आपको एज अ डॉक्टर ये बताना चाहूंगी कि आई टेल माई पेशेंट्स की जैसे आप चाय ले रहे हैं तो उसके साथ साथ या पहले या बाद में आप मुझे 2 कप ऑफ पानी भी पी के देंगे।
1: अच्छा
0: तो आप उस चीज में अपने ऑफिस

0: में भी किसी एक चीज से एसोसिएट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल कि मीटिंग में घुसने से पहले आप एक ग्लास पानी पियेंगे, तो अगेन वो आपकी ट्रिगर हो जाती है या हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है. तो उसमें आपको फिर थोड़े दिनों बाद ना आपको मेंटली वो याद नहीं रखना पड़ता, वो एक हैबिट बन जाती है कि जब भी मैं मीटिंग रूम का वो डोर खोलूं उससे पहले मैं एक ग्लास पानी पीऊं, या मैं बाहर निकलूं तो मैं एक ग्लास पानी पीऊं. एंड यू आर राइट कि मूवमेंट भी इससे बढ़ती है क्योंकि आप फिर वॉशरूम भी जाएंगे, आप पानी पीने भी जाएंगे, तो ये आपको एक्टिव रखता है
1: जी. तो दिन में अमूमन एक सामान्य व्यक्ति को कितने लीटर पानी पीना चाहिए?
0: रेकमेंडेड देखिए 3 से 4 लीटर तो है पर डे, बट अगेन अपने डॉक्टर से इसकी जरूरी सलाह लीजिए क्योंकि कुछ किडनी पेशेंट्स हैं, लिवर या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें पानी की रिस्ट्रिक्शन होती है, फ्री पानी की, जो फ्री वाटर हम कहते हैं. बट फॉर जनरल पब्लिक 3 to 4 लीटर इज गुड.
1: और अगर एक सामान्य व्यक्ति 3 से 4 लीटर पानी पीता है तो इसका असर उसके वेट पर क्या पड़ता है?
0: ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपकी बॉडी उस वेट को पकड़ के रखती है. जैसे ही बॉडी में पानी मिलता है वो उस वेट को छोड़ देती है. नाउ प्लीज इसको नोट करिए, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर वेट जो हम शुरू के 1-2 डेज में किसी भी डाइट में आप नोटिस करोगे आपके 1-2 kg ऐसे ही घट के, एंड दिस इज गुड क्योंकि आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है. बट इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ग्लूकोज अंदर कैसे यूज हो रही है एंड कैसे आपकी बॉडी उस मोटापे को ऑक्सीडाइज कर रही है. सो हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस जर्नी.
1: जी, तो वेट मैनेजमेंट में पानी पीना बहुत जरूरी है. वाटर ब्रेक का आपने उल्लेख किया था, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक. आपको कौन सा गाना पसंद है डॉक्टर मेघला?
0: पल पल दिल के पास.
1: पल पल दिल के पास आप ये गाना आकाशवाणी पे सुने, साथ ही साथ थोड़ा पानी भी पी लें, मुस्कुरा भी लें.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जहां आज हम बातचीत कर रहे हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, खासतौर पर मोटापे पे। और चर्चा के लिए आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघला चंद्रा और साथ ही श्री विकास शर्मा। डॉक्टर मेघला, अगर कोई व्यक्ति वेइंग मशीन पर अपना वेट नापता है तो सामने मशीन दिखाती है एक नंबर, उसको कैसे इंटरप्रेट करें?
1: देखिए, वेइंग मशीन तो एक नंबर दिखाती है, आप उस नंबर का वो कैसे लेते हैं, क्या आप जानते हैं? ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेयरनेस, कि आपको पता है वो नंबर आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, कि क्या आप ओवरवेट हैं, आप ओबीज कैटेगरी में आ रहे हैं, बट ऑल्सो कि आपको उस नंबर से ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है या डीमोटिवेशन मिल रही है, और उसको इंटरप्रेट करना कैसे है। तो मशीन का काम है नंबर बताना, पर आपका काम है उसको समझना एंड सही प्रोफेशनल के साथ इंटरप्रेट करना।
0: पर अगर मान लो वेइंग मशीन में किसी व्यक्ति का वेट आया 70 किलो, तो क्या आजकल जैसे हम कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन को समझें, तो उस नंबर से आगे जाकर समझ बढ़ानी होगी?
1: बिल्कुल। तो बॉडी कॉम्पोजिशन हम बहुत यूज करते हैं अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, इट्स ऑलमोस्ट अ गोल्ड स्टैंडर्ड डेक्सा स्कैन। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आपका सिर्फ वजन नहीं बताता, क्योंकि वजन बहुत तरीकों से एंड बहुत सारी चीजों से बनता है, जिसमें आपका बोन वेट आता है, वाटर वेट आता है, मसल मास आता है, एंड ऑफकोर्स फैट मास आता है। तो इन सबको मिलके जो आप एक नंबर देख रहे हैं वो आपके वेइंग स्केल पे आ रहा है। अब बॉडी के अंदर कैसे ये टूटा हुआ है, कैसे आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जानना बहुत जरूरी है, कि क्या आपका फैट सिर्फ स्किन के नीचे है या ऑर्गन पे डिपॉजिट है, आपकी मांसपेशियां कितनी हेल्दी हैं, कितनी स्ट्रांग है, आपकी बोन हेल्थ कैसे है। तो वो आपका रियल मेटाबॉलिज्म स्टेट बताता है, उसको इंटरप्रेट करना, और उसी तरीके से हम ट्रीटमेंट भी गाइड करते हैं। तभी ये जो अप्रोच है ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड होती है, हर डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट अप्रोच होती है। तो आप जनरल गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं मोटा मोटा, बट अगर आपको रियली ट्रीट करना है ये, तो आपको पर्सनलाइज्ड अप्रोच करनी ही पड़ेगी, जिसमें आपके मसल मास प्रिजर्वेशन, फैट लॉस, वाटर मास, ये सारा इंक्लूड होता है
0: जी। और क्योंकि वेट लॉस मैनेजमेंट, ओबेसिटी मैनेजमेंट बड़ा कस्टमाइज्ड है, जैसे डॉक्टर मेघला ने कहा, तो ऐसे में विकास जी, आप तो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो आज जमाना AI का है और भी बहुत सी तकनीक है, तो जिस तकनीक को मैं कह रहा हूँ जिस वजह से मेरा वेट बढ़ता है कि मैं कंप्यूटर के सामने घंटों बैठा हूँ, ये विरोधाभास की स्थिति है कि वही तकनीक मुझे फिटनेस में मदद भी कर सकती है?
2: जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोई भी काम रिपीटेडली करते हैं तो आप उसको AI के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं, और AI वो आपकी जगह पे काम करेगा। तो AI क्या करता है, AI अगर आपको सपोज 25 पेज का एक डॉक्यूमेंट पढ़ के एक पेज की समरी बनानी है, तो आपको एक घंटा उसको पढ़ने के लिए बैठना होगा। आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कि आप वो डॉक्यूमेंट फोटो क्लिक करके या PDF की फॉर्म में AI को दीजिए और उसे बताइए आपको उसके हेडर्स क्या आपको चाहिए, तो वो आपका वही काम 5 मिनट में कर सकता है। तो आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, जो आप एक घंटा बैठ रहे हो, जो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो काम आपका 5 मिनट में होगा, तो आपके पास फ्री टाइम होगा आपकी अदर एक्टिविटीज के लिए। दूसरा, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में एक रैट रेस है कि जो ज्यादा जिसका टास्क मैनेजर भरा हुआ है वो ज्यादा बिजी है, लोग इसको प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं, वो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है हेल्थ के लिए भी और लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय के लिए भी, कि वो अपना कैलेंडर भर के बैठा है बट वो प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसका अदर एस्पेक्ट्स, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स सबके ऊपर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो पर्सन एक काम को करने में 4 घंटे लगाएगा उसका सैलरी इंक्रीमेंट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जबकि दूसरा स्मार्ट होता है जो AI का इस्तेमाल करता है और वही काम वो एक दिन में कर देता है, फ्री टाइम भी रहता है, एक्टिव भी रहता है और उसकी हेल्थ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हमें AI का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एज अ बर्डन नहीं लेना चाहिए कि AI हमारी जॉब किल कर देगा। AI हमारी सपोर्ट के लिए है, हमारे काम को आसान बनाने के लिए है, ना कि हमारी नौकरी को खाने के लिए
0: जी। और वर्ष 2026 में भारत ने राजधानी दिल्ली में ग्लोबल AI समिट की मेजबानी भी की थी, और उसका आदर्श वाक्य था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी AI और ये तकनीक हम सभी की सुख के लिए, मानवता की भलाई के लिए है। डॉक्टर साहब,
1: इसमें मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत बड़ी सपोर्टेड हूँ फॉर AI इन हेल्थ केयर। मैं आपको एक थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगी अपने श्रोताओं को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर से कभी मिलने जाते हैं तो पहले पूरी फाइल्स एंड पर्चे एंड पूरी 10 साल की रिपोर्टें आप लेके जा रहे हैं, वो डॉक्टर को कितनी

0: स्पीड में आपकी हिस्ट्री देख रहे हैं, क्या मिस हो रहा है उस जल्दबाजी में, क्या प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ नहीं पा रहे दूसरी डॉक्टर के फॉर एग्जांपल। तो ये सारा अब एआई इंटीग्रेशन की, जहां पे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक साथ है, तो ड्रॉप ऑफ्स, गैप्स होना, नॉलेज गैप्स पेशेंट की हिस्ट्री में, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम कवर अप कर पा रहे हैं आज। एंड ये डॉक्टर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, एक्यूरेसी इन डायग्नोसिस भी बढ़ाता है। हाँ, आप बिल्कुल उस पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हर टेक्नोलॉजी का दोनों बैकड्रॉ एंड बेनिफिट्स होता है, तो आप डिपेंडेंट ना होके, बट ये एक्चुअली डॉक्टर्स के लिए काफी स्ट्रेंथ प्रूव कर सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इससे डरे ना, इससे दूर ना, इससे जुड़ने की कोशिश करें, एंड इसको अपने डे टू डे काम के लिए, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी के लिए आप ला सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए और कौन कौन सा डेटा हमें ट्रैप करना चाहिए? जैसे अगर किसी ने स्मार्ट वॉच पहन ली, या अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं आज 10,000 कदम चला हूं, या फिर मान लीजिए उसकी कमर बहुत बड़ी है, या कभी कभी हमने देखा है फैट पेट पे आ गया या आर्म्स पे आ गया, ये सब डेटा भी जरूरी है?
0: एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले हमने बात करी बॉडी कॉम्पोजिशन की थोड़ी देर पहले, फिर अनदर इम्पॉर्टेंट होता है आपके ब्लड वर्क या लैब्स जो हैं, उसमें हम ज्यादातर हॉर्मोन्स, वाइटमिन्स, आपकी अगर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, ये सारा कैसे आपकी बॉडी में फंक्शन कर रहा है ये देखते हैं। उसके अलावा आते हैं दूसरे मेट्रिक्स, जैसे कि आपने मेंशन किया वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, या मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो आप हाथ की बात कर रहे थे, या थाई फॉर वेमेन, थाई सर्कमफ्रेंस होता है। इंडियंस में वेस्ट टू हिप रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी इंडियन रेस में व्हाट वी कॉल इट इज अ थिन ओबेसिटी, तो बीएमआई बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। बहुत लोगों को बीएमआई पता होगा, जिसमें हम केजी एंड हाइट को लेते हैं, बट मोर एक्यूरेट इज वेस्ट टू हिप रेशियो। इसके आगे भी और इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जैसे वेस्ट टू हाइट रेशियो भी है, बट इंडियन पॉपुलेशन में वो हम ज्यादातर यूज करते हैं। जब कोई अपना वेट, स्पेशली जो महिलाएं हैं वेट लॉस कर रही होती है, तो हम उनको ट्राई करते हैं कि आप मेजरमेंट्स पे, इंचेस पे ज्यादा ध्यान दें मोर देन द वेट। एंड नाउ कमिंग टू वेरिएबल डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास है उनके लिए वो डेटा इंटरप्रेट करके उनको उसको यूजफुल दिखाना, मतलब हाउ टू यूज दैट डेटा। कि आप सपोज 7 घंटे सोए, बट आपकी नींद इसमें दिखा रही है कि टूटी है, फ्रेगमेंटेड है, उस पे काम करना। अगर आपने 10,000 स्टेप्स किया है, तो क्या हम उसमें आपका हार्ट रेट उन 10,000 स्टेप्स में थोड़ा और पुश कर सकते हैं? ऑफ कोर्स एवरीथिंग शुड बी गाइडेड बाय प्रोफेशनल, अगेन ये खुद से ना करिएगा। तो इसमें ये सारा डेटा हेल्प करता है आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, एंड तभी आप पूरे मायने में एक पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं।
1: जी, तो ये तमाम डेटा यदि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैप्चर करती है, तो डॉक्टर्स के लिए आसान हो जाता है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देना। लेकिन जैसे आपने मेंटल फटीग की बात की थी, और जिसके चलते जब आप ज्यादा तनाव लेते हैं और बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो उससे वेट भी बढ़ता है, तो ऐसे में प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंट टूल है प्लानिंग, और वो मेंटल फटीग को कम करने में मदद करेगा, तो प्लानिंग करने में टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है?
2: जी जरूर, प्लानिंग में एक्चुअली जब हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, तो कॉर्पोरेट के अंदर एक कल्चर है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक रिपीटेटिव टास्क प्रतिदिन दिया जाता है। उसको मॉर्निंग में आना है, पंच इन करना है, और वही काम शाम तक करना है। तो अगर वो चाहे तो उस काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल के थ्रू ऑटोमेट कर सकता है, जिससे कि उसका प्लानिंग वाला जो पार्ट है, जो कि उसका टाइम सेव करेगा। सेकंड थिंग, वो अपने डेटा को डिजिटाइज कर सकता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप एक हैवी फाइल अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो आप अपने टूल्स की मदद से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल के टूल्स हैं, एआई के टूल्स हैं, जिनमें कि आप सीधा फोटो क्लिक करेंगे, वो आपको जो उस पे लिखा हुआ है उसको आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके दे सकता है। सेकंड थिंग आती है इसमें कि हम लोग के पास में बहुत सारे एआई से रिलेटेड टास्क मैनेजर्स मौजूद हैं, जो आपको काम से पहले अलर्ट देते हैं, जिससे कि आपका पूरा जो टाइम होता है कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में वो मैनेज रहता है, और आपके पास में बफर टाइम भी होता है, जिसमें कि आप अपने एडिशनल सरप्राइज वर्क भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप एआई से अपने डिसीजन मेकिंग जो आप नहीं ले पा रहे, कुछ ऐसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उस केस में हम एआई से हम सपोर्ट ले सकते हैं, और वो डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, और अपना डिसीजन मेकिंग है हम उसको सुधार सकते हैं।
1: जी, खान पान की अगर बात करें डॉक्टर मेघला, न्यूट्रिशन, उसकी अहमियत आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि कई बार हम सुनने में आता है कि जी एक फलाना व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता फिर भी बहुत मोटा है, और एक सब कुछ खा लेता है फिर भी पतला है।
0: खान पान एक वेट लॉस जर्नी में या एक हेल्थ की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलमोस्ट 70% टू 30% मे बी 30% फिजिकल एक्सरसाइज, बट 70% आपका हमेशा खान पान ही रहेगा. अब समथिंग जो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ईटिंग, किसी ने मुझसे पूछा था कि जब भूख लगे तभी

0: खाना होता है क्या? नहीं, अगर आप अपना एक स्ट्रक्चर ला सकते हैं खाने में कि ब्रेकफास्ट में कितने बजे टाइम पे करना है, आपको लंच कितने करना है. अब क्या खाना है वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, बट अगर आप उसको एक टाइमली फैशन में खा सकते हैं, अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हैं, चाहे आपका वो डे टू डे मील हो. हमारे भारत में इतनी डिफरेंट कल्चर्स हैं, टेबल पे हर टेबल पे डिफरेंट खाना मिलता है, फैमिली के कस्टम्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, तो उन सबको मिला के अगर आप ओवरऑल एक टेक अवे पॉइंट यहाँ से देखें कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड ईटिंग कर सकते हैं, टाइम पे पोर्शन कम कर सकते हैं अपने खाने का, पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो उसी से ही आपको बहुत फर्क पड़ेगा. नाउ आपने मुझसे पूछा कि एक व्यक्ति खाता है और उसका वजन ज्यादा बढ़ता है, तो इसमें एक्चुअली हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, आपके जीन्स, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स प्ले इन करते हैं. हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है जो डॉक्टरों को बिल्कुल डायग्नोज करनी चाहिए इन एनी पेशेंट हु स्ट्रगलिंग विद वेट और एनी अदर हेल्थ इश्यूज, तो स्पेशली महिलाओं में. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसकी अगर डायग्नोसिस नहीं होती तो पेशेंट स्ट्रगल कर सकता है एंड आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों वो हो रहा है.
1: और एक बार सरल शब्दों में हार्मोन क्या है ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए.
0: जी बिल्कुल. तो हार्मोन आप सोचना चाहेंगे कि एक केमिकल मैसेंजर जैसे हैं जो एक अंग से दूसरे अंग पे एक्ट करते हैं. तो बेसिकली आपकी बॉडी बता रही है एक ऑर्गन को कि तुम्हें ये काम करना है और ये इसका मैसेंजर है हार्मोन. एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन बोलेगी कि शुगर कम करनी है, थायराइड बोलेगा कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, कॉर्टिसोल बोलेगा आपने मेंशन किया पहले कि स्ट्रेस को कम करना है. तो ये सारे स्ट्रेस हार्मोन, इंसुलिन मतलब अब आपकी डायबिटिक हार्मोन जो आप सुनते रहते हैं, थायराइड हम जानते हैं कि कम है या ज्यादा है तो उससे भी आपके मोटापे पे बहुत फर्क पड़ता है.
1: स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन.
0: करेक्ट. सो मेलाटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. उसी तरीके से सिंस आपने टॉपिक छेड़ा है मैं बोलना चाहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गट हार्मोन्स करके. जो गट हार्मोन्स होते हैं ये आपके ब्रेन एंड गट मतलब की पेट में एक इंटरेक्शन लाते हैं. तो आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी इसमें ताकि लोग समझ जाएं. सपोज आपका एग्जाम है और आपको बहुत नर्वसनेस हो रही है, उससे पहले बहुत लोगों को भूख नहीं लगती या एकदम लूज मोशन टाइप हो जाता है, तो ये भी एक रोल है कि आप मेंटली एंशियस हैं एंड आपका पेट उस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है. सेम थिंग इमोशनल ईटिंग आती है इसमें कि आप सपोज आपका बहुत लंबा दिन है, स्ट्रेस है और आपको अब कुछ खाना है और वो कभी भी वो कुछ खाना हेल्दी नहीं होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ फ्राइड या प्रोसेस फूड आइटम ही होगा क्योंकि वो बॉडी के हार्मोन पे डिपेंड करता है. तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. गट हार्मोन से लेके आपकी ब्रेन के बैलेंस में डिसरेगुलेशन होती है. सो इसको आप अपना फेलियर ना मान के प्लीज एक डॉक्टर से जांच करवाइए ताकि वो आप एड्रेस कर पाए.
1: जी बिल्कुल. और तकनीक क्या हमारी मदद कर सकती है कि हम ये डिसाइड करें हमने कौन सा न्यूट्रिशन कब लेना है, कौन सी रेसिपी हमारे लिए अच्छी है?
2: जी जरूर. तकनीक की सहायता से हम जैसे मैं एग्जांपल एक देना चाहूंगा कि हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा कंज्यूम करना है जो कि पैक्ड फॉर्म में मिलता है और उस पे पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, बट बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वो न्यूट्रिशन के जो लेवल पे वैल्यूज लिखी हुई है उनका असल मतलब क्या है. हम लोग आजकल देखते हैं पामोलिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मार्केट में हैं जो कि काफी सारी कंट्रीज में बैन है. तो मोटापे के पीछे पामोलिन का इनटेक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और हम लोग क्या करते हैं, हमने पैकेट खोला, सीधा खा लिया, हमें पता ही नहीं है उसमें है जो कि हम खाने की फॉर्म में अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं. तो हम एआई से उसका लेवल अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दें तो वो हमें बता सकता है कि आपकी बॉडी के लिए आपके लिए कौन सा इनटेक सही है, कौन सा बैन प्रोडक्ट उसमें डाला हुआ है. क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे लोगों को नॉलेज नहीं है तो कुछ भी मिल जाता है, तो वहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से मदद कर सकता है. दूसरा, इंडिया में फॉल्स क्लेम्स बहुत होते हैं जैसे 10 दिन में वेट लॉस करें, ये चीजें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधा पूछ सकते हैं कि क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, तो वो आपको बेटर बताएगा कि वो चीजें जस्ट अ फॉल्स क्लेम है. आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कहीं फेक तो नहीं है, वो चीज भी आप एआई से जान सकते हैं कि वहां पे नेगेटिव रिव्यूज को एक्चुअली क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज के बीच में. तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10,000 रिव्यूज हैं तो हमें उसमें नेगेटिव अगर 10 रिव्यूज हैं वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया है वो चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके. तो उस केस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं उसके नेगेटिव रिव्यूज को एक्सट्रैक्ट करने में, उसको पढ़ने में और समझने में. दूसरा, मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टर्स को आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो अपने पेशेंट का डेटा अच्छे से रीड कर पाए। मैं कहूँगा पेशेंट

0: को भी चाहिए कि वो अपनी रेगुलर चेकअप की रिपोर्ट्स, अपने जो भी वो इंटेक कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रेस्क्रिप्शंस हैं, जो उनका फूड पैटर्न है, वो सारी चीजें एआई के अंदर रखें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब वो कोई लेवल स्कैन करें तो एआई उनको वो चीज बता पाए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर या जो आपका प्रेस्क्रिप्शन कहता है उसके लिए वो पर्टिकुलर फूड अच्छा है या नहीं।
1: जी बिल्कुल, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है ताकि समाज स्वस्थ रहे। और जो भी आप हेल्दी प्रोडक्ट ले रहे हैं बिल्कुल चेक करें कि वो वास्तव में हेल्दी है।

0: आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जहां आज हम फोकस कर रहे हैं फिटनेस पर। हम फोकस कर रहे हैं कि हम ओबेसिटी यानी मोटापे से कैसे बचें। हमारे साथ स्टूडियोज में है डॉक्टर मेघला चंद्रा, ओबेसिटी मेडिसिन फिजिशियन, और साथ ही श्री विकास शर्मा, जो कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है। डॉक्टर मेघला, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि अब तो 100 दिन से भी कम रह गए हैं, तो आप योग की अहमियत कैसे देखती हैं ओबेसिटी से लड़ने में?
1: एनी टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट ओबेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसके लिए अच्छा है अगर आपको वो डिजीज ट्रीट करनी है। योगा इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, और ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता कि योगा के भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं। आप इंटेंसिटी में कर सकते हो, आप होल्डिंग पोजिशन जो है वो उसको लंबा बढ़ा सकते हो, तो फिर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एक्टिवेट होती है उसी आसन में। तो जरूरी नहीं है कि एक आसन आपको एक ही चीज के लिए बेनिफिट दे, अगर आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में करेंगे तो वो आपकी मल्टी मसल्स को भी टारगेट कर सकता है। मेरा फेवरेट आसन इज मंडूक आसन, के नाम से आप जानते होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स प्लीज इसको अगर आपको कोई और बीमारी है हर्निया वगैरह की तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा, बट मंडूक आसन इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को नेचुरली बढ़ाता है। आपकी अंदर की जो पैंक्रियाज हैं, जो हम जानते हैं डायबिटीज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। इसी तरीके से हर आसन मेरे हिसाब से योगा में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड शुड बी डन ऑफ कोर्स विद, मतलब थोड़ा आप अपने इंस्ट्रक्टर से, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वो भी आप देखिए, बट योगा इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी।
0: जी, योग भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, और आप एक कुशल सानिध्य में ही योग को प्रैक्टिस भी करें, और उसमें भी आपने देखा है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि कैसे आप पहले एक वार्म अप करेंगे, चालन क्रियाएं, फिर आसन है, और उसके बाद प्राणायाम। लेकिन ऐसे क्रम में जब ध्यान आता है तो ध्यान को हम कैसे समझें?
2: जी जरूर, अगर मैं ध्यान की बात करूं तो हम ध्यान को लेते हैं एक रीसेट बटन। आपने देखा होगा कभी कभी आपका फोन हैंग हो जाता है या आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है।

0: तो आपके पास एक रीस्टार्ट बटन होता है, तो आप उसको प्रेस करके अपना फोन रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर सकते हैं। उससे होता क्या है, रीस्टार्ट करने से जो एक्टिविटीज आपके डिवाइस में चल रही होती हैं वो सब रुक जाती हैं, और फिर आपका जो डिवाइस है जब वो ऑन होता है तो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश काम करेगा। सेम सिचुएशन को हम अपनी ध्यान वाली बात से समझते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में हों, चाहे अपने डे टू डे लाइफ में हों, हम बहुत सारी चीजें एक साथ में कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और कई बार हमने ये देखा है कि हम जब बहुत कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल उलझ जाता है, तो उस समय हमें ध्यान की बहुत जरूरत है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा अपने सभी लिसनर्स को कि आप प्रतिदिन 5 मिनट अपने ध्यान पे जरूर लगाएं। ध्यान कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस आपकी सांसों का आना और जाना, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका ब्रेन ध्यान के बाद में बिल्कुल उन सारी उलझनों से, उन सब चीजों से दूर होके फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इनहांस होती है उससे। और इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पोस्चर में बैठने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान पोस्चर का नहीं, आपकी बेसिकली सांसों का संतुलन है। तो आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, जो पेशेंट्स हैं जो नहीं बैठ सकते लंबे समय तक, तो आप बेड पे सीधा लेट के भी ध्यान कर सकते हैं, आप अपनी फोकस करिए। और अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, आप चेयर पे बैठ के 2 मिनट अगर आप देंगे तो वो आपको बेटर प्रोडक्टिविटी देगा। वही चीज आपके लाइक हम अगर नॉर्मल लाइफ में भी हैं तो वहां पर भी हम ध्यान को एक पॉजिटिवनेस की तरह ले सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा लाइक योगा है, उसमें आपको फिजिकली बहुत कुछ करना होता है, बट ध्यान में उतना फिजिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान आपका मन जो है उसको संतुलित करता है, आपके ब्रेन को संतुलित करता है। बाकी चीजों के लिए आपको योगा करना है अगर बॉडी को ठीक करना है तो।
1: जी, तो ध्यान भी एक टेक्नोलॉजी है, नेचुरल इंटेलिजेंस।
2: जी बिल्कुल, इस पे आई टोटली एग्री जो आपने बोला है। देखिए, हमने बात करी न्यूट्रिशन के बारे में, हमने बात करी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, तो ये डिस्कशन थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर हम बात नहीं करेंगे मेंटल स्ट्रेस के बारे में और स्लीप एंड रिकवरी के बारे में। तो आप चाहे कितना भी एक्टिव रहें, आपको बॉडी को रेस्ट एंड रिकवरी का टाइम देना ही पड़ेगा। तो जो स्लीप है, आजकल कहते हैं इट्स द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी, जो नींद है, चैन की नींद, नींद तो शायद आ भी जाए, चैन की नींद थोड़ी मुश्किल होती है आजकल, तो वो पाना बहुत मुश्किल है, तो हमें ऐसा लगता है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी से सराउंडेड हैं, तो हम उसको एक डे टू डे लाइफ में ब्रिंग इन कर पाए हैं, बट उसको आपको डिटैच करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप सोने से पहले जा रहे हैं। थोड़े से अगर आप सिंपल रूल्स फॉलो करें, फॉर एग्जाम्पल कॉफी नहीं पीनी 3 घंटे पहले बिफोर योर स्लीपिंग टाइम, रूम को आप ट्राई करें कि एकदम शांत रखें, थोड़ा सा ठंडा रखें, अगर आप फोन को किसी और कमरे में चार्ज कर सकते हैं रात को अपने पास ना रख के, वो भी आपको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें से ब्लू लाइट जो निकलती है, रेडिएशन निकलती है, प्लस आपको एक थोड़ा एक्टिवेटेड रहता है आपका दिमाग कि ओ क्या ये बज रहा है, क्या मैसेज आया। तो इन सब चीजों को अगर आप सिंपल लिमिटेशन करेंगे, उसी में आपको बहुत फर्क दिखना शुरू करेगा। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सुबह उठते ही प्लीज अपना फोन मत चेक करिए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एटलीस्ट आधा घंटा, कम से 1 घंटा एटलीस्ट दीजिए, वेयर यू आर ट्राइंग टू रीफोकस अपने में, आज का दिन है, आज क्या करना है, मैं कैसे, हाउ एम आई वेकिंग अप, मैं फील कैसे कर रही हूँ, एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग जैसे आपने मेंशन किया। तो अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, यही होता है ध्यान, यही होता है मेंटल स्ट्रेस, एंड इसी को ही एक पार्ट है स्लीप एंड रिकवरी जर्नी का।
1: जी, और श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मेघला चंद्रा एक ऑथर भी हैं, और आपकी पुस्तक का जो शीर्षक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बेली मीट्स ब्रेन। तो पेट और ब्रेन का क्या संबंध है?
2: पेट और ब्रेन का बहुत इम्पोर्टेंट संबंध है। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेन में आपके सेंटर्स होते हैं जो आपके गट हॉर्मोन्स जहाँ पे आके एक्ट करते हैं। नॉट ओनली दैट, अदर हॉर्मोन्स भी आपके ब्रेन से ही, हाइपोथैलमस से निकलते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं। सो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, आप कोई भी ले लीजिए, जनरल हॉर्मोन्स हो गए। गट हॉर्मोन्स में हम बात करेंगे तो आजकल कुछ लोगों ने सुना होगा ग्रेलिन के बारे में, लेप्टिन के बारे में। ग्रेलिन मतलब जो भूख लगाता है, वो वाला हॉर्मोन होता है जो पेट से सिक्रीट होता है। फिर आपका लेप्टिन है। अभी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 3 साल बाद हम, आई एम वेरी श्योर, हम लेप्टिन रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो अनहेल्दी फैट जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लेप्टिन अभी लोगों की नजर में आ रहा है, एटलीस्ट मेडिकल कम्युनिटी में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन रिकग्नाइज हो रहा है, जो एक्चुअली फैट सेल से ही रिलीज होता है, और इसका मेजर रोल होता है, जैसे मैंने आपको गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बताया, तो ये एडिपोसाइट से रिलीज होके, जो फैट सेल्स हम जिसे कहते हैं, वो आपके ब्रेन में जाके सैशिएशन कॉज करता है, यानी कि आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है।

0: भूख पूरी हो गई है
1: मेरी
0: बताता
1: भूख
0: है।
1: पूरी हो गई है। सो सपोज आज आपने फॉर एग्जांपल एक पराठा खाया है ना, आपने मेरा पेट भर गया है, अब मैं जा रहा हूँ काम पे, तो वो आपको कौन बता रहा है? वो ये एक हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको बताने के लिए कि मेरी भूख पूरी हो गई है एंड सैटिस्फाइड भूख। ठीक है, बहुत लोगों की भूख पूरी होती है बट सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
0: मैं तृप्ति हो गई मुझे खाना खाने की,
1: तृप्ति हो गई हाँ तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हो क्या रहा है, जिसे हम आप चाहे वेस्टर्नाइजेशन कह लो, अर्बनाइजेशन कह लो, हमारा जो प्रोसेस फूड जो है इनटेक, जो हम पहले खाते थे, उससे बहुत चेंज होता जा रहा है। इनफैक्ट बच्चों में ज्यादा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इंस्टेंट नूडल्स हो गए या यू नो बर्गर खा रहे हो या जो भी आइटम्स आप खा रहे हो, उसको आप पहले जब खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे आज मैंने इस कंपनी का बर्गर खाया और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बट धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो आपको खुशी मिलती थी, जैसे हम डोपामिन बूस्ट कहते हैं या रीसेट सेंटर, उसमें वो भी हो जाता है धीरे धीरे, तो आपका जो न्यूरो सेंटर है वो रीसेट होने लगता है। तो सपोज अगर आपको आज एक बर्गर से सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, वो आपको थोड़े महीनों बाद, 6 महीने बाद नहीं मिलेगी, फिर आपको 2 बर्गर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर करते करते आज मेरे को 2 बर्गर से नहीं, मुझे पिज्जा भी खाना है फॉर एग्जांपल साथ में, तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये चीज को हम लेप्टिन रेजिस्टेंस के नाम से जाने लगेंगे। ऑफकोर्स इसमें और भी साइंस है, मैं थोड़ा इसको जनरल ब्रेक डाउन करके समझा रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबिसिटी में, जहां आप खाए जा रहे हो आपकी भूख में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, पेट भर चुका है। ठीक है, बट जिसे हम कहते हैं ना आंखें बड़ी हैं पेट से, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज में रोल प्ले करता है, इसको हम लेप्टिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं साइंटिफिकली।
0: लेकिन अगर कोई युवा ये कहे कि मुझे बर्गर पिज्जा खाने से खुशी मिलती है और डॉक्टर मेखला मुझे रोक रही है
1: तो अगर आपने कभी इलाज करवाया, मैं आपकी कभी कोई चीज इमीडिएटली नहीं रोकूंगी। अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उसको क्या हम धीरे धीरे डिक्रीज कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं? अगर मैं आज आपको मना करूं चावल ना खाने को, आप जाते ही पहले चावल खाएंगे, ठीक है, दैट्स अ रीबाउंड नेचर, ये ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस जर्नी में कंटिन्यू करें, धीरे धीरे उसको स्लो करें, टेपर डाउन करें और रिप्लेस विद द मोर न्यूट्रिशियस आइटम्स, जैसे हमने थोड़े आइटम्स के बारे में बात भी करी, एंड माइक्रो हैबिट्स, प्लीज माइक्रो हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिल्डिंग के लिए।
0: आपने साइकेट्री की पढ़ाई भी की है
1: जी हाँ।
0: तो अगर मान लीजिए किसी का बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा आया, मान लीजिए 30 से ज्यादा है, और वो मोटापे के दायरे में आ रहा है मेटाबॉलिक पैरामीटर्स के हिसाब से भी, कभी कभी उसको लगता है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेरा मोटापा दूर नहीं जा सकता, ये सही है मिथ या रियलिटी?
1: इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा रियलिटी है फ्रॉम द पेशेंट साइड मेंटली, बट मिथ है फ्रॉम द डॉक्टर साइड, साइंस की साइड से। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेंटल जो है आपकी हेल्थ, इट प्लेज दोनों तरफ से रोल। सपोज अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसका कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि वो ज्यादा खाए, क्योंकि उससे उसको सपोज वो अच्छा एक खाना है, आपका कोई फेवरेट खाना हो, फॉर एग्जाम्पल राजमा चावल आप ले लीजिए, तो वो जब वो खाता है उसको थोड़ा नोस्टैल्जिया या घर की याद या समथिंग दैट इज ट्रिगरिंग अ डोपामिन बूस्ट इन हिम, तो उससे वो खाने को एसोसिएट कर लेता है। तो वो डिप्रेशन में जब आपके यू आर फीलिंग लो इन सर्टेन हार्मोन्स आल्सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स में, तो वो खाना आपको एक पॉजिटिव दे रहा है, तो वो एसोसिएशन बन जाता है, इससे एक साइकिल बन जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो जो खाना आपको सपोज एक पराठे में आपको वो बेनिफिट मिल रहा था मेंटली, अब आपको 2 पराठे में मिलने लगेगा, फिर आपको 3 पराठे में, क्योंकि वो बॉडी जो होती है अडैप्ट भी हो जाती है उस सेंटर से, फिर पर्सन स्टार्ट्स ओवर ईटिंग, तो ये एक साइकिल शुरू हो जाती है। अब वो ओवर ईट कर रहा है तो ऑफकोर्स वो पर्सन अपने बारे में अच्छा फील नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपका सोशल इश्यूज आ जाता है, बॉडी इमेज डिसऑर्डर होती है। नाउ अब इसको अब दूसरी तरफ से देखें कि सपोज किसी को अनहेल्दी वेट है, आज हम उसको मोटापे के नाम से बोल रहे हैं बट आई वुड कॉल इट अनहेल्दी वेट जो है आपकी बॉडी में, उसका जो रीजन है सपोज कुछ और है, फॉर एग्जांपल वेमेन में पेरीमेनोपॉज है, मीनोपॉज है, पीसीओएस है, ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन फ्लक्चुएशंस होती हैं जो काफी अंडरलुक्ड होती है वेमेन में, तो उसकी वजह से आपके और भी हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। सो ये एक साइकिल है मेंटल हेल्थ एंड ओबिसिटी की, इसमें यू नो जैसे हम बोलते हैं कि चिकन पहले आया एग पहले आया, ये डॉक्टर का जॉब है डायग्नोस करने का, एंड दे बोथ शुड बी एड्रेस्ड। एंड कोई भी वेट लॉस जर्नी में बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। अब बिहेवियर थेरेपी ये नहीं है कि आप मेंटली बीमार हैं, इट कैन बी हैबिट फॉर्मिंग जैसे मैंने आपको बोला, इट कैन बी अवेयरनेस जैसे आपने न्यूट्रिशनल लेबल्स के बारे में बोला, इसके लिए बच्चों में अवेयरनेस लाना, सपोज मैंने अब घर पे कोई प्रोसेस फूड रखा है तो ऑफकोर्स मेरे बच्चे सबसे पहले वो जाके लेंगे राइट, पर अगर वो है ही नहीं या मैंने उनको बोला कि ये मे बी अभी आप अवॉइड कर रहे हैं, लेट्स ट्राई दिस, ये सारा आपका उसमें रोल प्ले करता है कि अवेयरनेस दे रहे हो आप, एजुकेशन दे रहे हो आप, उनको बता रहे हो

0: कि ये वाला न्यूट्रिशन सही लेबल्ड नहीं है. एंड इसमें भी मतलब मेरे थोड़े डिफरेंट व्यूज हैं, क्योंकि इसमें हमारे पॉलिसीज थोड़ी आती हैं दैट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, स्पेशली टुवर्ड्स चिल्ड्रन. बट मेंटल हेल्थ ओवरऑल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड बिहेवियरल थेरेपी, तो ये दोनों लिंक्ड हैं. इनको हेल्थ मतलब ये नहीं कि आपको डिजीज है, प्लीज इसको आप सबसे पहले इनग्रेन कर लीजिए. इट इज जस्ट कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स फूड कैसा है और आपको फूड से क्या टाइप ऑफ फीलिंग मिलती है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिलती है, कंप्लीट फीलिंग मिलती है. So that's a response that you're trying to fix.
1: Right. So it's very essential to understand in correct perspective our relation with food, because we are what we eat. इस जंक्शन पर डॉक्टर मेखला आपके पसंद का एक और गाना.
0: अरे वाह. तो मुझे जाने जा ढूंढता फिर रहा बहुत अच्छा लगता है. एंड इसको थोड़ा सा इस टॉपिक में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी कहाँ है, अच्छी कहाँ है, वो ढूंढते रहते हैं. एंड हेल्थ यहीं है, हेल्थ आपकी किचन में है, हेल्थ आपके हाथ में है, तो उसको ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके पास ही है वो.
1: और इस गाने में रणधीर कपूर, जय भादुरी पेड़ों के इर्द गिर्द है, तो प्रकृति के निकट रहने से भी सेहत.
0: एब्सोल्युटली, नेचर इज द बेस्ट क्योर.

0: आकाशवाणी दिल्ली पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आगामी 7 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार की थीम है टुगेदर विद हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो ये जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है डॉक्टर मेखला, इसको समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान ने बहुत से सोल्यूशन दे दिए हैं हमारी सेहत से जुड़े।
1: जी, मैं इसमें 101% यकीन करती हूँ। कोई भी साइंस, कोई भी स्पेशली इन मेडिसिन, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। ये इमोशनल साइंस नहीं होती। कनेक्टिंग विद पेशेंट्स इज इमोशनल। आपका एक एम्पैथी होता है, वो अलग चीज है, बट जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड। गाइडलाइंस बेस्ड होना चाहिए एंड पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए। जो आप सपोज मैं अमेरिकन पॉपुलेशन में मैंने ट्रीट किया वर्सेस इंडियन पॉपुलेशन में, बहुत फर्क है। तो आपको वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा आपकी उनकी कल्चरल, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। दिस ऑल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड साइंस। दिस इज ऑल स्टार्टिंग विद एजुकेशन ऑफ द डॉक्टर हिमसेल्फ एंड ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको टू द राइट पीपल। तो अगर मैं आज आपको सपोज मैंने बोला आप चिया सीड्स ले लो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा यू नो ओमेगा फैटी एसिड है, बट अफोर्डेबिलिटी भी है एक काम।

0: सो ये सारी अगेन इट्स साइंस में, जरूरी नहीं है कि साइंस आप वो जो है जो बुक्स हमने पढ़ी हैं 9th 10th में और जो हमने मेडिकल स्कूल में पढ़ी, कुकिंग इज ऑल्सो अ साइंस. तो हमने तेल की बात करी नहीं आज, बट तेल का जैसे यूजेज है वो भी साइंस है कि आप कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, कितने बॉन्ड्स हैं उसमें, आपका कितनी हीट पे आप उसको तेल को कर रहे हो. सो इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एविडेंस बेस्ड.
1: ये जरूर बताइए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में हमेशा अनुरोध किया है कि आप अपनी ऑयल कंजम्पशन में कटौती करें, तो एक तो रीहीटिंग ऑयल का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हम कहाँ कम कर सकते हैं तेल का कंजम्पशन?
0: सबसे पहले ऑयल का अगर आप मेरे को थोड़ा टाइम देंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी. ऑयल हम 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो सैचुरेटेड फैट है जो आप जैसे घी हो गया, बटर हो गया, इनको बहुत बदनाम किया हुआ है, बट अगर आप थोड़ा उसको राइट पोर्शन में यूज करें तो इट कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल. तो मैं घी ऐसे मना नहीं करती, बट इसमें अगेन आप पोर्शन बहुत डिपेंड करते हैं कि एक चम्मच है या आप पूरा एक बड़ा चम्मच लेके यूज कर रहे हैं. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, हम उसको पूफा एंड मूफा के नाम से जानते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड. तो उसमें बॉन्ड्स होता है. तो मोनो अनसैचुरेटेड में आपका आता है जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल जैसे हम जानते हैं, और पॉली में आ गया आपका यू नो सनफ्लावर ऑयल या सेसमी ऑयल. तो ये सारे ऑयल्स जो मेनली जैसे आपका राइस ब्रैन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल, दीज आर गुड फॉर फ्राइंग. ठीक है, ये सारे अच्छे ऑयल्स हैं जिसको आप फ्राई के लिए यूज कर सकते हैं हमारी इंडियन कुकिंग में, जैसे कि आपकी पूरी हो गई, पकोड़े हो गए, इसमें टेस्ट भी नहीं होता. बट इन सबसे भी अच्छा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, जो हमारे काफी क्षेत्रों में यूज होता है भारत में, हर रोज की किचन में नहीं शायद, बट मस्टर्ड ऑयल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसको स्मोक पॉइंट तक हीट करें एंड देन यूज इट. तो इट इज गुड, बहुत सारे लोग स्पेशली साउथ में वेस्ट में उससे कुकिंग करते हैं, इट्स अ गुड ऑयल. अब बात आते हैं रीहीटिंग में, जहां हम सारे फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें वो थोड़ा सा बचाना होता है, बट आप ये नहीं जान पाते कि वो बॉडी को कितना हानिकारक हो जाता है. सो मैक्सिमम आई वुड रेकमेंड आप रीहीट एक बार से मैक्सिमम 2 बार करें, उससे ज्यादा रीहीट ना करें. व्हेन यू नो कि ऑयल रीहीट से खराब हो चुका है, इस जब या तो आपको एक अलग सी स्मेल आने लगे, या वो ऑयल आपको ब्लैक या डार्किश दिखने लगे, कलर चेंज हो गया है, या उसमें फोम हो गया है, तो दैट इज अ ऑयल आपको उसी वक्त फेंकना पड़ेगा. प्लीज डू नॉट यूज इट, क्योंकि उस वक्त उसमें टॉक्सिन्स बन गए हैं, कार्सिनोजन जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो भी बनते हैं, क्योंकि इसमें आपके सारे बॉन्ड्स टूट चुके हैं, एंड जो अनसैचुरेटेड फैट का जो था वो आपका उसका जो बेनिफिट था वो बहुत पहले जा चुका है. तो रीहीटिंग ऑफ ऑयल इज डेफिनेटली नॉट एडवाइज्ड. एंड दी ओनली टेक अवे पॉइंट हियर इज कि अपने ऑयल को आप चेंज करते रहें, कि ऐसा कोई ऑयल नहीं है कि 100% यही है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा ऑयल यूज करना है, मैं आपको बोलूंगी आप हर 2-3 महीने में अपना ऑयल बदलें एंड अपनी ऑयल की कंजम्पशन कम करें. अब कंजम्पशन कम करना बोलना आसान है, प्रैक्टिकली करना कैसे?
1: चाय के साथ मट्ठी नहीं लेनी.
0: हाँ, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर श्योर. बट वन प्रैक्टिकल टिप आई वुड से कि सपोज आप पराठा बना रहे हैं, तो आप यूजली पोर करेंगे उसे बॉटल से, तो उसकी जगह अगर आप चम्मच से उसको डाल सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाएगा आप पोरिंग की जगह. और उससे भी बेहतर है, जो कि बहुत चीपली मिलता है, इज द ऑयल ब्रश. अगर आप उसको यूज कर सकते हैं स्पेशली पराठे डोसा ऐसी जो चीजें हैं, उससे आपका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली 10-15% खुद ही गिर जाएगा. एंड 25 ml ऑफ ऑयल फॉर एग्जाम्पल आपने कम कर लिया, आपने अबाउट 25 kcal कम कर ली, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस. बूंद बूंद से ही सागर बनता है.
1: जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया. तो खान पान पे नियंत्रण रखना है विकास जी. दूसरा हिस्सा अच्छी सेहत का, फिटनेस का है एक्सरसाइज. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज एक युवाओं में एक अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग करते हैं, इससे मसल मजबूत होती है?
2: जी बिल्कुल, जिम जाना एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है. और मैं इवन जो लोग जॉब में हैं, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, मैं उनसे भी ये अनुग्रह करूंगा कि आप एटलीस्ट इतना देर पहले उतर जाइए अपने वाहन से कि आपको 5 मिनट का आपका वॉक हो पाए. क्योंकि अंदर जाने के बाद में आप चेयर पे बैठ जाते हैं, आप अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी को जो एक एक्सरसाइज वाला पॉइंट है, क्योंकि हमको डेली 9 बजे पहुंचना होता है, तो कई बार ये चीजें हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे पाते. जो लोग फ्री हैं वो ओब्वियसली कर रहे हैं, बट जो लोग काम कर रहे हैं, जो कामकाजी व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा सा ये चीज चलनी चाहिए कि उनका वॉकिंग थोड़ा बढ़ जाए, या अगर उनको फोन कॉल्स लेने हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो थोड़ा वो ट्राई करें कि चेयर से उठ जाएं, थोड़ा वॉक कर लें. तो उससे भी हमारी हेल्थ पे काफी अच्छा असर पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, हम सभी का एक ही पता है प्लैनेट अर्थ, और बहुत जरूरी है कि सतत विकास के लिए हम सभी योगदान दें और इस बात को समझें कि हमारी सेहत सीधा सीधा पृथ्वी की सेहत से भी जुड़ती है। लेकिन कार्यक्रम में आपने डॉक्टर मेघला चंद्रा

0: राजमा चावल का जिक्र किया, पूरी सब्जी का जिक्र किया, तो अगर किसी को क्रेविंग है ये खाने की, चॉकलेट की, तो क्रेविंग को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे?
1: अरे ये तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है. क्रेविंग हम अगेन सोचते हैं, सबसे पहले प्लीज जानिए कि आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी कमजोरी नहीं है. क्रेविंग में भी साइंस है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मीठा, जैसे आपने बोला चॉकलेट की क्रेविंग, या तो मेरे पास जब भी पेशेंट आते बोलेगा मेरे को मीठे की क्रेविंग हो रही है, आई स्पेसिफिकली आस्क कि किस चीज की क्रेविंग हो रही है, यू नो मिठाई हो रही है, चॉकलेट हो रही है, क्योंकि वो भी आपको बहुत बताता है. नाउ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शुगर क्रेविंग इज कि आपकी अंदर एनर्जी डिप्लीशन है. चाहे आप वो एनर्जी आपको लग रहा है आप अल्ट्रा प्रोसेस फॉर्म में ले रहे हो, या आज आपने यू नो दो पराठे खा लिए, बट वो स्टिल कार्ब डोमिनेटेड है. ठीक है, तो एनर्जी प्रोटीन से आती है जो हम एक्चुअली अच्छी वाली कहते हैं. नाउ आपने मेंशन किया कि प्रोटीन एक्सेस हानिकारक हो सकता है, हो सकता है, इसलिए अगेन ये सारा ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ आप जनरल गाइडलाइंस ले सकते हो, बट अगेन हर पेशेंट पे डिपेंड करता है किडनी प्रोफाइल एंड लिवर प्रोफाइल उसकी कैसे है. कमिंग बैक टू क्रेविंग्स, तो यूजली उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है या उसकी कैलोरीज मीट नहीं हो रही है. सो बहुत लोग करते हैं कि आज से मैं डाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है, एंड आप देखोगे कि शुगर क्रैश हो गया है, दो तीन दिन बाद ही इज फीलिंग मिजरेबल, एनर्जी कम हो गई है, चौथे पांचवें दिन उसको बहुत क्रेविंग हो रही है किसी चीज की, यू नो मिठास की. ये एक टिपिकल साइकिल है. तो इसमें आप शुरू जब हम करते हैं प्रोफेशनली, तो इसके साथ साथ विड्रॉल के साथ हम प्रोटीन सैशिएशन, मतलब वो इंट्रोड्यूस करते हैं. दूसरी कॉमन क्रेविंग्स होती है नमकीन खाने की, या नमक या चिप्स ऐसे कुछ खाने की. दैट यूजली टेल यू कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो स्पेसिफिक यू नो सोडियम पोटेशियम ऐसे जो मिनरल्स है, वो उसकी कमी है पानी की, तो आप उसको उससे कम्बैट कर सकते हैं. तो आपकी टाइप ऑफ क्रेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना.
0: जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर मेखला चंद्र ने बताई है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी खाद्य पदार्थ की क्रेविंग होती है, तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक इशारा है कि उसके अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट की या वाइटामिन की कमी है. तो चलते चलते अंतिम सवाल, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए क्या, डॉक्टरी सलाह पे ही लें? और बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसकी एक टाइमिंग है, यानी वो सप्लीमेंट या तो सुबह लिया जाएगा या रात को लिया जाएगा.
1: जी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपके हार्मोन्स एंड अंदर की जो एनर्जी साइकिल्स चलती हैं बॉडी में उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो रात को लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी रिकवरी एंड रेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्लीप में. तो वो एक्चुअली अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो उससे आपकी नींद बेटर होगी, आपकी एनर्जी बेटर होती है, आपके क्रैम्प्स बेटर हो सकते हैं. विटामिन डी इज अनदर इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि हम बोलते हैं कि दूध के साथ या आप नॉर्मल खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट एंड विटामिन किस वक्त ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और उसका इफेक्ट आपको फुल क्या दिख रहा है. बट प्लीज कोई भी सप्लीमेंट खुद से ना लें, अपने डॉक्टर से जरूर जांच करवाएं. बहुत मैंने देखा है कि लोग ओवरडोज स्पेशली ऑन विटामिन डी करते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई जिंक एंड कैल्शियम शुरू करता है, मल्टीविटामिन शुरू करता है, उसकी कभी बंद ही नहीं होती क्योंकि डॉक्टर ने कभी उसे बोला ही नहीं बंद करने को. तो ये सारा जो अनइंटेंशनल ओवरडोजिंग है ये भी बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं. बट मेरा बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिएगा.
0: जी, और मुझे लगता है कि अंत में हम इतना कह सकते हैं कि सबसे अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं अच्छी धूप, ताजी हवा, खूबसूरत वादियां, पर्यटन, गीत संगीत, कला, संस्कृति, योग, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, मित्रता, अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने अनुभव साझा कीजिए. जिंदगी बहुत खूबसूरत है यदि आप फिट हैं, क्योंकि फिट हैं तो हिट हैं. आज कार्यक्रम में आके आज फिटनेस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मेखला चंद्रा आपका, विकास शर्मा जी आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू.
0: तो आशा करते हैं कि हम सभी अच्छे स्वास्थ्य में निवेश करेंगे और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएंगे. कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार जी, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं अमित अरोरा, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आपसे अनुमति चाहूंगा. नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे

हेलो हाय नमस्कार उनकर छंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदार तबे आपणक पाखरे किछि कथा किछि गीत सो सहित पहुंच जाय छी मु आपणक रेनबो साथी सुभी कथा तो निहाती हवा किंतु प्रथमे गीत नहले केमिति हबो तबे आपणक पाखरे पहुंचे दो छी किछि ब्यूटीफुल ट्रैक्स एवं ता परे आपणक पाख पूनी फेरी भी एंड ढेर सारा कथा हवा जी तबे एमती आम सहित जोड़ी हेथांतो एवं कहतांतो दिल से दिल तक।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आई।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
1: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक फ्रेंड्स ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुबह छ आपन के सहित सो चली छ किछि कथा किछि गीता एंड आज किछि कथा किछि गीता रे आमे कथा उतले से ब्रेकफास्ट विषय रे फ्रेंड्स सकाळे इमती किछि खाद्य खाइबा उचित जोटा कि आपन को लॉन्ग टाइम जानके पेटो पूरे रखिबो माने आपन को पूरा फील कर रखिबो जहाद्वारा कि आपणकर क्रेविंग्स कंट्रोल ही रहिबो माने आपणको आउ बेसी भूक लागिबो नाही सो फ्रेंड्स इमती किछि खाइबार जदि कथा आसे जहा कि बहुत ही लाइट हे थाए किंतु आपणको पूरा भितरु फील करी रखिता सेटा हैला हम ओडिसा रो सुपर फूड मांडिया मांडिया चाउरे प्रचुर परिमाण रे फाइबर थाए सेथिपाई एहा अमो ब्लड रे शुगर को कंट्रोल करे आउ अमो शरीर को ठंडा रखी थाए सो फ्रेंड्स जलखियारे मांडिया को शामिल करिबा माने निजो हार्ट को सुस्थ रखिबा

सुरेशंदी साहित्य स्मिक चारी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुबह अच्छे आपने को सही तो सो चली ची किची कथा किची गीता फ्रेंड्स खारा दिनों

0: नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
1: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
0: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
1: ये कौन सा टीका है दीदी?
0: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
1: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
0: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UVN पर रजिस्टर कर लो।
1: धन्यवाद दीदी।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मौजी आपन का रेनबो साथी सुभी आपन का सहित ए डोरा कथा चित्र रे प्रशांत नंदंगर अभिनय समस्त मन को बेस छुईथिला तांकर से सरल निष्कपट गाउली चरित्र भूमिका रे माने डोरा भूमिका रे अभिनय समस्त मन को बेस छुईथिला सेते बेले ओडिसा रो पहाड़िया अंचल लोक माने सहित बेस रिलेट करिथिले तेबे आपनको पाखरे पहुंचि दउछि डोरा कथा चित्ररु आउ किछि ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक्स स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आउ कहथान्तु दिल से दिल तक

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मोजी आपणक सहित आपणक रेनबो साथी सुवी विद द शो मो देसो फ्रेंड्स आमो ओडिसा आमो राज्य ओडिसा को जेते बेले आमे ओडिया भाबरे समुद्र कथा भाबू सेते बेले आमो छाती गर्वरे कुंडे मोठे जाए आमे ओडिया सही जाती जे दिने बोइत बंदाण करूथिला जे सात दरिया पारी हे वाणिज्यर विजय वैजयंती उडाउथिला फ्रेंड्स आजि होछि जातीय सामुद्रिक दिवस सही अंचल जलराशि को प्रणाम करिवार दिन जी आम भारत मातर पाद धोई दिए आउ शत्रु कबलरु आमको सुरक्षा दिए समुद्र से नील पानी केवल एक जलराशि नुहे आम इतिहास आम संस्कृति आउ आम गर्व गरिमार प्रतीक